89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Nici. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Nici, burga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: माय गॉड, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot,
3: मिर्ची fresh माल,
5: full on मस्ती, madness और जंगल के adventure के vibes के साथ सुनो, welcome to the jungle title track।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वेद शर्मा की आवाज और राइट ईयर जुड़ गई है आपके साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ईयर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई जिस तरह से ये वेदर हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आ रहा है हमारे लिए कि भाई अब तो लग रहा है कि बस बच्चे चले गए हैं वेकेशंस पर या घर पर हैं तो बस घर पर ही रहें, जितना हो सके इंडोर रहने की कोशिश करें, क्योंकि अब से एक्सट्रीम जो कहते हैं हमारे कतर की जो जुनून वाली गर्मी है वो शुरू हो गई है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल देखिए वेदर आज ये कह रहा है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा आज 43 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, मिनिमम 33 पर जाएगा। हालांकि अभी आप जो महसूस कर रहे हो 37 डिग्रीज है। ह्यूमिडिटी, यही तो कह रही थी मैं कि ह्यूमिडिटी अब जो है 60% पर आ गई है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये 80% तक भी जाएगी। सो ठीक है, वी आर ऑल प्रिपेयर फॉर इट। वो कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, सनस्क्रीन के साथ, पानी के साथ, बहुत सारा पानी पीते रहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखे, एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो सिर्फ एक चीज नहीं बॉडी को अफेक्ट करती है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। सो इसीलिए पानी पीते रहिएगा। मीनवाइल आपको यहाँ पर ठंडे ठंडे मूड में रखेंगे हम हॉट हॉट गानों के साथ में। कमिंग अप नेक्स्ट, दर्शन रावल और रोचक कोहली, जोनिता गांधी की आवाज में गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, अभी कुछ दिनों से हमें भी ये लग रहा है कि भाई शौक थोड़े से बदलने पड़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, क्योंकि हमारी कतर की अब थोड़ी दिन जो है गर्मी की तरफ ज्यादा आ गए हैं, मतलब इस तरह से आ गए कि हम अब बाहर दिन में निकलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन हाँ शाम जो है अभी हमारी है, हल्की सी थोड़ी हवाएं चलती रहती हैं और काफ़ी बेयरेबल है। एंड एट दिस मोमेंट जहाँ बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और अब आप सोच रहे हो कि भाई क्या अब क्या करें, बच्चों की अब जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारे ऊपर आ गई है इन्हें एंटरटेन करने की, तो फिर ऑल द फैमिलीज आउट देयर एक बहुत ही बढ़िया प्लान यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको। 3rd of July फ्राइडे शाम 7 बजे 974 बीच पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी लेकर आ रही है अ नाइट अंडर द स्टार्स, जहां फेस पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग सेशंस, आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग और फैमिली बीच गैदरिंग है। मतलब एक ऐसी इवनिंग जहां बहुत ही खूबसूरत तरीके से फैमिली एक साथ आकर बहुत सारी चीजें कर सकती है ना। ये यूजफुल इंफॉर्मेशन भी सुन लीजिए कि 6 साल से छोटे बच्चे और पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए एंट्री इज एब्सोल्यूटली फ्री। ओके, 14 साल से कम बच्चों के लिए टिकट्स जो है इसकी 15 कतरी रियाल है एंड अडल्ट के लिए टिकट्स जो है इसकी 35 कतरी रियाल है। तो बता दिया मैंने आपको आपका फ्राइडे का प्लान, ऑलरेडी मंडे है और फिर ये वाले जो प्लान्स है ना ये थोड़े से पहले से करें तो ज़्यादा बेहतर होते हैं ना। तो 974 फैमिली डे एट बीच, जिसे कहते हैं अ नाइट अंडर द स्टार्स। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर माइक से दिल तक ऑन मिर्ची। इट्स हॉट and coming up with this beautiful track here. दो मीठी मीठी सी आवाज, जब भी हम इन्हें सुनते हैं ना तो इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आता है, और मैं बात कर रही हूँ शान की और साथ में श्रेया घोषाल की। वांटेड मूवी का ये गाना राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
2: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
1: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: शंकर महादेवन जी, अगर आप थक गए होंगे ब्रेथलेस, तो फिर अब मैं शुरू हो जाऊं ब्रेथलेस।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: वेल दोस्तों, सच सच बताओ मुझे कि इस वक्त पर, यानी दोपहर के वक्त पर, आप धूप में कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? 30 सेकेंड, 2 मिनट, चलिए मैक्सिमम 5 मिनट। अब एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके लिए वही धूप उनका वर्क प्लेस है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और एक ऐसी न्यूज अपडेट लेकर आई हूँ जो न्यूज अपडेट से ज्यादा एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
2: क्या खबर कतर?
0: देखिए, खबर तो ऐसी है दैट कतर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक बार फिर रिमाइंड किया है कि अगर आपको समर वर्किंग आवर्स के दौरान कोई रूल्स के वायलेशन दिखे या किसी वर्कर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती नजर आए, तो आप उसकी रिपोर्ट 4048264 पर कर सकते हैं। नंबर इज 4048264। देखिए, ईमेल के थ्रू भी आप रिपोर्ट केस कर सकते हैं इस बारे में। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रिपोर्ट करना मतलब किसी कंपनी को मुसीबत में डालना हो सकता है। नॉट रियली, रिपोर्टिंग का मकसद पनिशमेंट से पहले प्रिवेंशन है ना। हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक में सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए टाइमली रिपोर्टिंग किसी वर्कर की हेल्थ ही नहीं, कभी कभी उसकी जान भी प्रोटेक्ट कर सकती है। और एक बात तो ये जरूर है, कतर के समर वर्क रूल सिर्फ लॉ नहीं है, दे आर ह्यूमैनिटेरियन सेफ गार्ड। तो बस इसमें हमें भी साथ देना चाहिए। और अगर आपको कहीं कुछ लगे कि कोई बाहर काम करते नजर आए, स्पेशली दोपहर के, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, देन डेफिनेटली यू शुड रिपोर्ट इट। मीनवाइल, मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

देखो दोस्तों, मूड जो है वो अब बदलने वाला है। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मैं वर्ल्ड कप के मूड के बारे में बात कर रही हूँ जो अब कम्प्लीटली बदल चुका है। इनफैक्ट अब नॉकआउट स्टेज है, मतलब जीतो या घर जाओ। हाँ, यहाँ पर कोई सेकेंड चांस नहीं मिलने वाला है। कल राउंड ऑफ 32 का ओपनिंग मैच भी हुआ है, जहाँ कैनेडा ने साउथ अफ्रीका को 1-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली है। देखिए, ग्रुप स्टेज की कंसिस्टेंसी नॉकआउट में भी इनकी काम आ गई है। और आज फुटबॉल फैंस के लिए मैं कह सकती हूँ एक डबल ब्लॉकबस्टर है। सबसे पहले तो जर्मनी का मुकाबला पैराग्वे के साथ होने वाला है। जर्मनी टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट टीम्स में से एक रही है, लेकिन नॉकआउट फुटबॉल में एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। उसके बाद ब्राजील वर्सेज जापान, एक्सपीरियंस वर्सेज डिसिप्लिन। जापान ने ग्रुप स्टेज में सबको इम्प्रेस किया है और ब्राजील अपना फिफ्थ स्टार बचाने की रेस में लगा हुआ है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये लगती है मुझे, दैट 48 टीम वर्ल्ड कप का ये जो नया राउंड ऑफ 32 फॉर्मेट है ना, ये अंडरडॉग्स को और ज्यादा मौके दे रहा है। इसीलिए अब सिर्फ आपके फेवरेट्स पर बेट मत लगाइए, क्योंकि वर्ल्ड कप का फेवरेट डायलॉग तो आप जानते ही है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक राइट ऑन मिर्ची आपके साथ। सुनते रहेगा और बने रहेगा हमारे साथ। इट्स हॉट

0: मोहित चौहान की आवाज, दिल्ली सिक्स का ये गाना, ए आर रहमान की म्यूजिक, व्हाट अ परफेक्ट स्टार्ट टू द डे आई वुड से। और अगर दिन की शुरुआत करनी है तो जरा वक्त भी तो मिला लीजिए। मिर्ची घड़ी में बज रहे सुबह के 7:12 और हो रहा है थोड़ा सा मुर्गा बनाने का वक्त। राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मेहनत पे पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: कर दे, मैं तो कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

Yeah.

देखो वो क्या है ना, थोड़ा क्रेडिट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे और आपको भी मिलना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और मैं बताती हूँ कैसे। पहले कतर ना ज्यादातर पॉपुलर था फॉर अ ट्रांजिट डेस्टिनेशन, लेकिन अब कतर अपने आप में एक पूरी की पूरी तरह ट्रैवल डेस्टिनेशन बनते जा रहा है ना। और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट ना आपको और हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे घर पे हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये सारे लोग आते रहते हैं, और भाई इस बात का ना अब प्रूफ भी आ गया है दैट इस साल के फर्स्ट क्वार्टर यानी सिर्फ जनवरी से मार्च तक के बीच में 11.3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कतर आए। एंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में ये नंबर्स और भी एक्सेलरेट होने वाले हैं। एंड व्हाई नॉट भाई, मतलब अब गर्मी का ये जो टाइम है ये 2 महीना ही रहेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद तो बहुत अच्छा वाला वेदर हमारे कतर में शुरू ही होने वाला है। एंड वेल ऑन दैट नोट, विजिट कतर का हेलो समर कैंपेन यानी हाला समर सिर्फ कम टू कतर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है दैट स्टे लॉन्गर एक्सपीरियंस मोर, क्योंकि यहाँ पर फैमिली एंटरटेनमेंट है, इंडोर अट्रैक्शंस है, शॉपिंग फेस्टिवल्स है, वाटर पार्क्स है, बीच क्लब्स है, और कई होटल्स पर तो 50% ऑफ का ऑफर्स भी चल रहा है। मतलब कतर समर को चैलेंज नहीं अपॉर्चुनिटी बना रहा है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये भी लगता है दैट वर्ल्ड कप के बाद कतर का फोकस सिर्फ मेगा इवेंट्स पर ही नहीं है, अब एम्फसाइज जो है रिपीट विजिटर्स पे भी है। ठीक है, जो एक बार आए हैं वो दोबारा भी आ जाइए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक सो कतर लीव्स इट्स मैजिक, कि जो यहाँ से विजिट होकर जाता है, एटलीस्ट माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डू से दैट कि यार आफरीन सच कहूँ तो कतर में बहुत सुकून है, और जिंदगी में जब भी हमको सुकून चाहिए होगा ना हम कतर दोबारा आएंगे। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। और मिर्शी, इट्स व्हाट

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
1: Love is my biggest fear because for me love is death.
0: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी है।
0: Catch Officer Brown, tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
3: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
4: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ पाइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: चलिए हमारे गली में आई गए हैं तो सवाल जवाब भी हो जाए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स अ मंडे मॉर्निंग और मैंने आज ना सोचा कि चलिए आज आपके मंडे को ना ऐसा दिमाग को खोल देते हैं, और वो कैसे, डिफिकल्ट वाला सवाल पूछकर। हो गए ना कान खड़े आपके। सो यस, सीन सुनाने वाली हूँ आपको और आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी का ये सीन सुना रही है। एंड दिस मूवी इज अर्ली 2000 की मूवी आई वुड से, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, शायद बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आपको कुछ क्ल्यू दे। और मूवी के बारे में ना मैं आपको बाद में बताती हूँ, थोड़े से हिंट तो आपको आज जरूर लगने वाले हैं। सो हियर इट गोज।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: चाहती हूँ प्रेम, सच्चे प्यार का क्या मतलब होता है? अपने प्रेमी को खुश देखना। और पूजा मेरा सच्चा प्यार, मैं पूजा को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पूजा को मेरे प्यार के बारे में पता चले। मुझे मालूम है कि तुम भी उससे कुछ ना कहोगी। प्रॉमिस।
3: क्या हूँ करण? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ छोड़कर जा रही हूँ। दिल अजीब सा हो रहा है, जैसे जैसे मेरे जाने का वक्त नजदीक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ दूर जा रहा है। अच्छा करण।
1: ऑल राइट। जैसे मैंने कहा था ना, बैकग्राउंड म्यूजिक पर थोड़ा ध्यान दो तो शायद मूवी का पता चले। एंड ये जो मूवी है और ये जो एक्टर हैं, ये हमारे बॉलीवुड में कुछ ना कहने के लिए फेमस है। अब आप समझ जाइए मैं किसकी बातें कर रही हूँ। और ये उन चंद मूवी में से है शुरुआत की जहाँ पर इन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है। 5000196 इज माई नंबर, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर। एंड इट्स सो ग्रेट कि भाई नाम आ रहे हैं यहाँ पर। और समायरा मैं ये बता दूं कि आपने जो बताया है वो आपने मूवी का नाम नहीं बताया, आपने इस मूवी में गाने का नाम बताया। अब थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डालिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं। समाधान सोनावने का मैसेज है, देन आई हैव राहुल का मैसेज जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चार्ली ऑल्सो सेज राइट आंसर। सो असीस कौर की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
2: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे. थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
1: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
3: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: अर्ज किया है
5: इरशाद. इरशाद.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: Our business is our business, none of your business.
2: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
0: Qatar का number one radio station.
3: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Ochanati kuri. Ochanati kuri.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Hi, Anjali. Mirchi Helpline. Ball.
1: You know, I loved winning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
2: Hey, to galat thodi bol raha hai. लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।
5: वेल, अगर जोक सुन लिया तो फिर सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन है आपके साथ, जो नॉट सो सिंपल सा सवाल लेकर आई थी आज। हाँ जी, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट में आज मैं ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल फ्लॉप रही है, लेकिन कुछ ऐसी फ्लॉप मूवीज होती है ना जिसका नाम हमें पता होता है, एंड इनफैक्ट ऐसी कुछ फ्लॉप मूवीज भी होती है जो हम सभी ने देखी होती है, शायद उनमें से ये एक मूवी है। कौन सी है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले चलिए यहाँ पर डायलॉग सुन लेते हैं। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये डायलॉग सुनो। लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
6: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
7: सच्चे प्यार का क्या मतलब होता है? अपने प्रेमी को खुश देखना। और पूजा मेरा सच्चा प्यार, मैं पूजा को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पूजा को मेरे प्यार के बारे में पता चले। मुझे मालूम है कि तुम भी उससे कुछ ना कहोगी। प्रॉमिस। क्या हूँ
8: करण? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ छोड़कर जा रही हूँ। दिल अजीब सा हो रहा है।
5: All right. काफी लंबा डायलॉग है, लेकिन इतना तो समझ गया है कि भाई ये कौन है, क्योंकि ये वो है जो अक्सर कुछ नहीं कहने के लिए फेमस है हमारे इंडस्ट्री में, और ये चंद मूवी में से है जहाँ वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या है ये मूवी का नाम? Let's hear it out from our listener कम दोस्त।
9: Good morning, Afreen.
5: Hi, good morning. I'm good.
9: This was from movie, और मुझे कुछ कहना है। Have a good day.
5: Have a good day. That is the right answer. और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, जैसे यहाँ अब्दुल रज़ाक का मैसेज है, मोहम्मद सुफ खान का मैसेज है, then I have राहुल का वॉइस मैसेज, राहुल which I won't be able to play right now, लेकिन I'm sure ये सही ही होगा। उसके अलावा I have ये कौन है, आवारापन खालिद, it's not आवारापन, चार्ली का मैसेज है, then I also have समाधान का मैसेज, and yes many more saying that मुझे कुछ कहना है। तुषार कपूर, यस यार, गोलमाल में जहां पर उनकी एक्टिंग इतनी फेमस है कुछ ना कहने के लिए, और जब भी ये कुछ कहने की कोशिश करते हैं कोई मूवी में तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। बेहतर है तुषार आप ना ही कहो। एंड इनके साथ में थी दैट ओवर एक्टिंग वाले फेज वाली करीना कपूर, रिमेंबर दैट टाइम जब करीना कपूर वॉज सो एक्स्ट्रा। वेल, एक्स्ट्रा की बात करें तो ये गाने इस मूवी के बहुत ही एक्स्ट्रा अच्छे थे। आई फील दो ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर 1 बताइए ये बजाओ या ऑप्शन नंबर 2 बजाओ। ऑप्शन नंबर 1 प्रीति पिंकी का ये गाना।

कोई जादू नहीं किया। ऑप्शन नंबर टू, वेल सोनू निगम की आवाज में ये गाना, और वो कहते हैं ना कभी कभार मूवी शायद फ्लॉप रहे लेकिन गाने कुछ इटर्नली रह जाते हैं। सो ये दो मैंने ऑप्शंस दिए थे जहां पर मैसेज आया है फॉर ऑप्शन नंबर वन। सो प्लेइंग दैट ट्रैक फॉर यू प्रीति पिंकी की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। इट्स हॉट।

ओ हेलो हेलो मिलेनियल्स, ये जेन जी की नई ट्रैवल लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हो आप? अरे ये जेन जी है, ये सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो कुछ नई चीज के लिए नए शब्द ये लेकर आते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और हमारी जो जेन जी है ये ट्रैवल के लिए बहुत सारे नए वोकैबलरी लेकर आए हैं, एंड क्योंकि ट्रैवल का सीजन है सो आई थॉट यू शुड नो। सबसे पहले तो वाइकेशन, स्टेकेशन तक तो हम समझते थे लेकिन ये वाइकेशन क्या है? मतलब पहले मूड डिसाइड होता है, डेस्टिनेशन बाद में। अगर सुकून चाहिए तो माउंटेन्स, एनर्जी चाहिए तो सिटी, इसे ये वैकेशन कहते हैं। नाउ मिरर ट्रिप वैकेशन बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी जैसी, जो आप हो वही आपका ट्रिप होगा, ठीक है। नाउ आई हैव अनदर वर्ड फॉर यू, दैट इज डी इन्फ्लुएंस्ड ट्रिप। हाँ, इन्फ्लुएंसर ट्रिप समझ में आता है। डी इन्फ्लुएंस्ड ट्रैवल क्या होता है? सोशल मीडिया पे वायरल जगह नहीं, बस वो डेस्टिनेशन जहां दिल जाना चाहता है। मतलब बस किसी से इन्फ्लुएंस ना होकर अपना डिसीजन लेना, इससे चलिए इसे भी एक वर्ड दे दिया है। अब एक और वर्ड है मेरे पास, एंटी आइटिनरी ट्रिप। नो मिनट टू मिनट प्लानिंग, बस निकल पड़ो और देखते जाओ दिन कहाँ ले जाता है आपको। क्योंकि हम मिलेनियल्स हैं ना, वी प्रिफर मोर ऑफ फोकस्ड प्लानिंग एंड ट्रैवल इन द ट्रैवल। जैसे ये 9 बजे नाश्ता करना है, फिर 11 बजे म्यूजियम जाना है, लेकिन नहीं भाई, जेन जी है, दे गो विद द फ्लो। इसे एंटी आइटिनरी ट्रिप कहते हैं। और इसी में कभी कभी हो जाता है एक कैनन इवेंट, ये भी एक ट्रैवल वोकैबुलरी बाय द वे, एक ऐसा अनप्लान्ड मोमेंट जो पूरी ट्रिप का हाईलाइट बन जाता है। कभी रोड साइड चाय, तो कभी किसी स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन, इसे कहते हैं। अगर आपके ट्रिप में कोई ऐसा हाईलाइट मोमेंट आएगा ना, तो आप ट्रैवल से आने के बाद उसे इस तरह से कहना कि आई हैड दिस कैनन इवेंट ऑन माई ट्रिप। देखिए कितने सारे मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स बताए हैं, इसके अलावा और भी है, धीरे धीरे से बताते जाऊंगी यहाँ पर जेन जी की लैंग्वेज विथ मी वन एंड ओनली माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: घड़ी का इशारा 8:12 की तरफ और अगला गाना रईस मूवी का अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में और मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? है राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्ती उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता आज? क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

मेडिटेशन क्या होता है ये तो हम जानते ही नहीं है आजकल की दुनिया में। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आजकल की ये बिजी दुनिया और ये मोबाइल एडिक्शन वाली दुनिया में मेडिटेशन तो वही रखिए साइड में, बिल्कुल वी कांट गेट दिस। बट इसी बात पर ना मुझे एक जोक याद आ रहा है, वो कुछ ऐसा है कि एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, यार तू मेडिटेशन करता है? तो वो बोला, हाँ फोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ और उसके सामने चुपचाप बैठ जाता हूँ, दोनों को एनर्जी मिल जाती है। And honestly, this is not a joke. This is what we do ना, कि मतलब जब फोन हमारा चार्जिंग पे होता है वही तो वक्त होता है हमारी जिंदगी में सुकून वाला। Well, talking about सुकून, चलिए बढ़ते हैं आगे वो नंबर्स की तरफ जो आपकी जिंदगी में कुछ सुकून लेकर आए। वेल, आज के आई पे के नंबर्स कुछ ये कहते हैं दैट एक कचरियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 25.90। वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.80 पाकिस्तानी रुपीस कहता है। अगर हम बांग्लादेशी टाका के बारे में बात करें तो 33.90 है, वेयर एज श्रीलंकन रुपीस इज एट 92.44। नेपाली रुपीज ऑन द अदर साइड इज एट 41.38। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे से ढेरों सारी खुशियां। एंड नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1 पर माहिक से दिल तक आफ्रीन के साथ, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
5: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: इतनी सोनी आवाज में हमने ये गाना सुना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। हाँ जी, वक्त हो चला है कि मैं और आप यहाँ पर मिलकर वो गेम खेले जो मैं आजकल नया नया सा गेम लेकर आई हूँ, जिसे मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ मैं इसे, कि भाई अब तक ये नाम तो दिया नहीं है वैसे मैंने, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यार ये वो गेम है जहाँ पर हम और आप मिलकर, मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर है वो ठीक करके वापस आती हूँ, तब तक आप केके की आवाज़ में ये गाना सुनिए।

0: की आवाज में आई होप आपने ये खूबसूरत गाना एंजॉय किया है। अब मेरी ये आवाज आपको अगर ठीक लग रही है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि द माइक वॉज गेटिंग अ लिटिल नॉटी। कभी कभार जिंदगी में कुछ शरारते चलते हैं। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। और देखिए भाई, अब वो वक्त हो चला है जहाँ पर मैं और आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, हल्का हल्का सा महसूस करते हैं जब ऐसे गेम्स खेलते हैं, है ना। सो वेल, यहाँ पर मैं किसी की आवाज़ लेकर आई हूँ। आपको गेस करना है कि आखिर आफरीन ये किसकी आवाज़ यहाँ पर सुना रही है, ये कौन सा एक्टर एक्ट्रेस और एनी वन इट कुड बी फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री। यू हैव टू टेल मी दैट। ओके, सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो और ध्यान सिंह की आवाज सुनो।
1: मिया बीबी राजी तो क्या करेगा गाजी?
2: आई नो माय डैड अप्रिशिएट्स ह्यूमर, सो आई ट्राई टू टेक अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। सो आई सैट ऑन एंड लाइक फुल कॉन्फिडेंस, क्या आपको चिंता नहीं है क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है कुछ? आपको परवाह नहीं है? सो आई वेंट इन दैट अप्रोच। सो ही सेड ऑफ कोर्स है, मैं मम्मी से पूछता रहता हूं क्या क्यों क्या हुआ। मुझे शादी करनी है। ढूंढता हूँ फिर, नहीं ढूंढ लिया मैंने। अच्छा कौन है? Then I told him Zaheer and you know we've been together for so long and you know he makes me very very happy and
0: All right, यहाँ पर एक नाम भी बीच पे लिया गया है जो आपके लिए हिंट रहा है। ठीक है, 5000186 इज माई नंबर। और ये आवाज किसकी है बताइए मुझे फटाफट से, आप बताइए 5000186 पर के ये जो एक्ट्रेस है जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, जिनके पप्पा को ये मनाना चाह रही थी शादी के लिए, और कौन है? चलिए तब तक के लिए आप आगे निवृत्त कौर की बातें सुन लीजिए बॉलीवुड बोल डाल में। मैं मिलती हूँ आपको बस छोटे से ब्रेक के उस पार।
3: निमरत कौर, आई लव यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
5: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: हेलो शॉप्स, Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
8: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा।
7: relative से advice लो तो कहते हैं
9: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: सुनिधि चौहान की आवाज़, दिव्या कुमार का साथ, और ये गाना मुझे हमेशा ममता कुलकर्णी की याद दिलाता है, और साथ ही साथ गणेश आचार्य, राइट? और गणेश, ये आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू कोरियोग्राफर्स, बट यू नो द ओरिजिनल गणेश, हमारे मास्टर गणेश जो 90s के कोरियोग्राफर रहे हैं, और उन्होंने इतने कल्ट क्लासिक गाने कोरियोग्राफ किए हैं, स्पेशली इन दिस सॉन्ग, जब ममता कुलकर्णी को उन्होंने इसमें कोरियोग्राफ भी किया था और इनफैक्ट खुद फीचर भी किया था इस गाने में. आपको याद आ रहा है क्या वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ? वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग कतर. देखिए भाई, यहाँ पर मंडे है ना, तो ऐसे जोरों शोरों वाला गुड मॉर्निंग करना जरूरी होता है, क्योंकि मंडे को अपना मूड एकदम ऐसा रहता है कि भाई अच्छा मंडे ही है. मुझे लगा था ट्यूसडे है, हफ्ता कहीं ना कहीं अटका हुआ लगता है, एंड दिस टाइम एंटरटेनमेंट जिंदगी में जरूरी होता है, एंड एंटरटेनमेंट के नाम पर मैं आ जाती हूँ आफरीन ऐसे अच्छे छोटे मोटे मजेदार से गेम लेकर, जहां आज मैंने एक आवाज सुनाई थी आपको, एंड आपको गेस करना था कि आफरीन आखिर ये किस शख्सियत को लेकर आई है यहाँ पर. सो वेल, आवाज किसकी है, चलिए आप पहचानिए. आवाज सुनाती हूँ मैं अभी आपको.
1: मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? What? I know my dad appreciates humor, so I try to take a very different approach. So I sat down and like full confidence. क्या आपको चिंता नहीं है क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? कुछ आपको परवाह नहीं? So I went in that approach. So he said, of course है, मैं मम्मी से पूछता रहता हूँ क्या क्यों क्या हुआ. Said नहीं मुझे शादी करनी है. Because he said हाँ मैं तो ढूंढता हूँ फिर. I said नहीं ढूंढ लिया मैंने.
0: मैं यहाँ पर कौन है इसी के लिए इंतजार कर रही थी कि यार ये जो एक्ट्रेस है ये बता दे किससे शादी की है इन्हें, ताकि आपको समझ आए. एंड दैट्स हाउ आई थिंक सो यू टुक द हिंट. वेल, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है यहाँ पर. पहले तो मुस्तफ़ा का मैसेज है, ताहिर का मैसेज है, और अब कोई हमें लिसनर कॉल भी कर रहा है, लेकिन भाई मैं लाइव हूँ, अब मैं कॉल नहीं उठा सकती. सो वेल, एस्ट्रिड का भी मैसेज है, रोहित का मैसेज है, और यस विवेक का भी मैसेज है सेइंग दैट आफरीन ये आवाज तो यार अपनी सोनाक्षी की है. यस, क्यूटी क्यूटी सी, आई जस्ट लाइक द क्यूटनेस ऑफ सोनाक्षी. बड़ी खूबसूरत है ही, दबंग में तो बहुत प्यारी लगी है ये. एंड सोनाक्षी और जहीर की ये जोड़ी अगर आप देखो तो इतने क्यूट एंड इतने फनी जोड़ी है. यू गाइज शुड फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इनकी नोक झोंक, प्रैंक्स, ये सारा कुछ ना बहुत मज़ा आता है देखने के लिए. सो विद दिस, सोनाक्षी का एक गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, नकाश अजीज की आवाज़, अंतरा मित्रा का साथ, एंड फीचरिंग अलोंग साइड शाहिद कपूर, नकाश अजीज, ईयर फॉर यू. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिए ऑन मिर्ची सॉट.

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: चला आता तुम्ही पण माझ्या सोबतच रहा. वेलकम बैक, मैं हूँ आफरीन और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बस मेरे साथ ही बने रहिएगा. आगे बढ़ने से पहले वक्त मिला लेते हैं साथ रहते हुए. मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 9:03.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और आफरीन है सुबह सुबह अपडेट्स ही तो लेकर आएगी. और फुटबॉल से बड़ी अपडेट फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस और क्या हो सकती है. सो दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप का मूड ना अब कम्प्लीटली बदल चुका है. अब नॉकआउट स्टेज है, मतलब जीतो या घर जाओ, बिल्कुल सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है. कल राउंड ऑफ 32 का ओपनिंग मैच भी हुआ है, जहां कनाडा ने साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह तो बना ली. ग्रुप स्टेज की कंसिस्टेंसी नॉकआउट में भी इनकी काम कर गई है वैसे देखा जाए तो. अच्छा ठीक है, आज फुटबॉल फैंस के लिए डबल ब्लॉकबस्टर है. सबसे पहले तो जर्मनी का मुकाबला पैराग्वे से होने वाला है. जर्मनी टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट टीम में से एक रही है, लेकिन नॉकआउट फुटबॉल में ना एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत महंगी पड़ सकती है. उसके बाद बात करते हैं ब्राजील वर्सेस जापान, यानी एक्सपीरियंस वर्सेस डिसिप्लिन, है ना. जापान ने ग्रुप स्टेज में सबको इंप्रेस किया है और ब्राजील अपना फिफ्थ स्टार बचाने की रेस में लगा हुआ है. देखिए, ये जो 48 टीम वर्ल्ड कप का ये नया फॉर्मेट है, अब ये राउंड ऑफ 32 फॉर्मेट भी जो है, इसमें मुझे क्या लगता है ना, अंडरडॉग्स को और ज्यादा मौके मिल रहे हैं. इसीलिए अब सिर्फ फेवरेट्स पर बेट मत लगाइए, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप का फेवरेट डायलॉग तो आप जानते ही है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
4: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
4: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot. Mixing in the house.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: कतर में ज्यादातर रहने वाले लोगों का एक ही मूड चल रहा है, हाथ में बस सैलरी आ गई है, शॉपिंग पूरा सेट है, वेकेशन के प्लान आगे दिख रहे हैं, बस मजे ही मजे। और ऐसे में कदर खूब जानता है कि लोगों को कहां कहां से शॉपिंग करवाए। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एक तो हम देख ही रहे हैं कि टीबल हजम यानी जो परफ्यूम एग्जीबिशन है उसका कितना ज्यादा क्रेज चल रहा है। इनफैक्ट मैं वहां पर कल गई हुई थी और जल्दी गई थी मैं, इनफैक्ट 10:05 में गई थी एंड एवरीवन वाज देयर यार, मतलब क्या बताऊं मैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट वन मोर शॉपिंग डेस्टिनेशन हियर, यहां पर हमारे कतर में जो है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जी हाँ यहाँ पर भी एक मस्त वाला एग्जीबिशन लगा है। एंड यहाँ आपको चीजें जो नजर आएगी ना, इट इज फ्रॉम ओवर 12 कंट्रीज। हाँ जी, अलग अलग कंट्रीज के एक्सेसरीज, कपड़े, होम डेकोर, मतलब इन दिस दोहा समर ट्रेड एंड शॉपिंग एग्जीबिशन आपको वो शायद सारी चीजें मिल जाएगी आपकी चेकलिस्ट में, जो आपको आपके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाने हैं। तो एक वहां पर भी चक्कर लगा ही लीजिए कि यू नेवर नो, यू माइट फाइंड सम ग्रेट पिक फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और ये बता दूं भाई, ये जो है इट्स हैपनिंग ओनली अंटिल 4th of July और उसके बाद में तो मेरे ख्याल से सारे निकल ही जाएंगे वेकेशन पर। आप कब जा रहे हो वो भी जरा बताओ और कहाँ जा रहे हो। 5000186 is my WhatsApp number, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। सॉट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, ये थॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स की दुनिया में लोग अपना एक अलग फिल्टर और एक अलग कैमरा लेंस लेकर बैठे हैं, जिससे वो एक दूसरे को बहुत जज करते हैं। जैसे किसी के बारे में ओपिनियन बनाना कितनी आसान बात है, बल्कि किसी को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और बस इसी ख्याल पर आज मेरी शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, जो मेरा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, जो नहीं मेरा उसके होने का ना होने का गम कैसा। अक्सर सभी लोग से बहुत प्यार मिलता है मुझे, अक्सर सभी लोगों से बहुत प्यार मिलता है मुझे, तो फिर उन चंद लोगों से वो प्यार वो एहसास ना मिलने का गम कैसा। खुद को बहुत करीब से जानती हूं पहचानती हूं मैं खुद को बहुत करीब से जानती हूं पहचानती हूं मैं जो मुझे जान ही नहीं पाया, उसके बदगुमान होने का गलत कहने सुनने का गम कैसा। बदगुमान होना यानी किसी को गलत कहना, गलत समझना। तो बस यही कहना चाहूंगी कि कभी कभी लोग हमें समझने से पहले ही हमारे बारे में फैसले कर लेते हैं और जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन जिस इंसान को ना खुद पर यकीन हो, उसके लिए दूसरों की गलत फहमियां बोझ नहीं बनती। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

पलक मुशल अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ। तैयारियां तो इतनी जबरदस्त दिख रही है मुझे सब जगह पर, मतलब एक मुझे वाइब कतर में ये नजर आ रहा है कि शॉपिंग मॉल्स में जाओ, या फिर मैं जैसे तीबल अजम मॉल में गई थी कल, तीबल अजम एग्जीबिशन में गई थी नाल अजम मॉल, वहां पर ना सबके चेहरे पर एक ये कि भाई ऑलमोस्ट के वेकेशन पर जाने की एक्साइटमेंट मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यार लोग अब अपनों के लिए फैमिली फ्रेंड्स के लिए इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, एंड आई लाइक दिस एनवायरमेंट इन कतर। और फिर क्या होता है ना, फिर जुलाई अगस्त के वक्त में थोड़ा सा हमारे कतर में थोड़ा सा सूनापन आ जाता है, खाली खाली सा हो जाता है ना। एंड ये टाइम पर ना अलग मजे और भी होते हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनको ना खाली सड़कें मिलती है। जैसे मैं सुबह में आजकल आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब बड़ा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, स्कूल की बसेस नहीं है, गाड़ियां काफी कम सी लग रही है। सो यार ये जो दो महीने ना, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी है, तो बस सभी के लिए बस यही कहना चाहूंगी, जिंदगी का वो प्रोज ही देखा जाए। यार गर्मी है छड्डो यार, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो कर ही सकते हैं ना, और वो है फिलहाल चिल करो। गर्मी में चिल करना कैसा होता है, रिलैक्स सोच में, ज्यादा लोड मत लो, रास्ता लोड नहीं ले रहा है, आप क्यों ले रहे हो। तो बस इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी अलविदा, मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो, दैट इज सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, आपकी सुबह वाली आदत यानी ये मिर्ची मॉर्निंग शो पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। टाटा बाय बाय सायोनारा, और सुनते रहिएगा मिर्ची। सुकृति कक्कड़ और सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में ये गाना दे जा रही हूँ आपको, दिल धड़कने दो से ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Milci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtuala burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तो तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड बस देखिए सुबह सुबह आपसे मिलने एक बार फिर से मैं आ ही गई मिट्टी घड़ी में। इस वक्त बज रहे हैं 10:12।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे अगर मुलाकातों के सिलसिलों की बात करें तो एक बार फिर से गजब तरह से ये सिलसिला हम सबकी जिंदगी में शुरू होने ही वाला है।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is our Jan Show with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए शो की शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले आज सुबह सुबह आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज की तारीख को देखने की कोशिश करें तो फाइनली जिंदगी में वो हफ्ता दस्तक दे चुका है जिसके साथ आपकी हमारी जिंदगी में अगर कुछ ऐड हुआ है तो वो है वेकेशन मोड। बिल्कुल, लास्ट थर्सडे की बात करें तो बहुत सारे इंडियन स्कूल्स जो हैं उनमें छुट्टियां लग चुकी थी। इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करें तो कई स्कूलों में आज है आखिरी दिन। एंड इसके साथ ही बहुत सारी स्कूल्स 2 तारीख तक इस सेशन को रैपअप करने की पूरी तरह से तैयारी में है। तो एक बार फिर से मुलाकात का सिलसिला अगर शुरू होगा तो आपका आपके घर वालों से। यार पता है क्या, बचपन की यादों को दिल से जीने का या फिर से दोहराने का जो मजा है ना, उसका कंपैरिजन किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। सच कहूं यार, जब भी मैं इन दिनों छुट्टियों में जाती हूं ना, मैं 2 काम जरूर करती हूं। मैं उन गलियों से जरूर गुजरती हूं जिन गलियों में मेरा बचपन बीता है, या तो फिर मैं अपने स्कूल के आसपास जरूर जाती हूं, भले ही मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन हां यार, देख के ना अपने स्कूल एंड कॉलेज को एक अलग सी तसल्ली मिलती है कि भाई यहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है। एंड कई चीजें आज भी सेम है। वो गुपचुप यानी कि पानीपुरी के वो जो ठेले वाले भैया है ना, अब खुद अकेले नहीं अपने बेटे के साथ ठेला लगाते हैं और दुकान में बदल दिए उन्होंने अपने ठेले को। यार ये सारी बातें, चाहे हम कुछ जिए या ना जिए, लेकिन इन पलों को ना हमेशा रिविजिट करते रहना चाहिए। करके देखें, मजा आएगा। एंड साथ उस किसी पुराने दोस्त को जरूर कॉल करना जिसके साथ आपने फ्यूचर के सपने देखे थे। चलिए जी, अभी फिलहाल आज के सपनों की दुकान खोलते हैं राघव चैतन्या एंड वरुण जैन की आवाज में। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का नाम, मैं तो उलझन सुलझाने आई। गाना सुनाते, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: मतलब बंजारी की खूबसूरत सी आवाज और लवली ट्रैक इट इज इस वक्त. ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो मैंने आपकी जिंदगी में शामिल कर लिया, लेकिन ये खास खबर भी आप तक पहुंचा दी जाए.
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इसके साथ ही आपकी ट्रैवल जर्नी जो है काफी एक्साइटिंग रहे एंड सब कुछ एकदम स्मूथ रहे, इसलिए सारे अपडेट्स भी आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं कर ही रही हूँ. देखिए यार, इसमें से आप में से कई लोग जो है इस वक्त अगर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो है इंडिया. आई एम प्रीटी श्योर वेकेशन का टाइम आ चुका है, घर वालों से मिलने की बारी आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से इंडिया ने किसी चीज को मैंडेट कर दिया है ट्रैवल के ठीक पहले. तो वो है एक फॉर्म जिसे आपको तकरीबन 24 घंटे के ठीक पहले फिलअप करना होगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इबोला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. बिल्कुल, एयर सुविधा 2.0 इज बैक एंड ये बस अगर एडवाइजरी निकाली गई है तो प्रिकॉशन के पर्पज से कि आप जाने से पहले पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, इस बात को डिक्लेयर कर आप ट्रैवल कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर जिस भी एयरलाइन को आपने बुक किया है बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली आपके ईमेल में फॉर्म की लिंक जो है वो आ चुकी होगी. अगर नहीं आई है तो आपकी सेफ्टी के लिए बता दूं, आप बिल्कुल एयर suvidha.civilization.government.in में जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे फिल इन कर सकते हैं. भैया क्यों इमिग्रेशन में जाकर टाइम वेस्ट करना, पहले से सारी की सारी तैयारी जो है वो पूरी कर लो. तो जहां पे एक तरफ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी क्यू आईडी होनी चाहिए, साथ में आपका बैग और बच्चे बीवी होने चाहिए, उसके साथ ये फॉर्म का होना लाजमी है. सेफ ट्रैवल्स, हैप्पी जर्नी. आते वक्त घर की मिठाई जो है मम्मी के हाथ की बनी हुई जरूर लेकर आना, अच्छा लगता है यार. 5001896 वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस. मीनवाइल मोहित चौहान की आवाज़, श्रेया घोषाल का साथ एंड ये अगला गाना एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

अजमल सुरनिगम की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा गाना। ये गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आप जो है मुझे कुछ सुनाने एंड बताने की तैयारी कर ही दें।

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आजान शो विद यू। वेल, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड इसके साथ ही कोई तो खास बात है जो आप सभी से शेयर भी करना चाहती हूँ। वेल, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीजों का लाइनअप ऑलरेडी हो चुका है शुरू। एंड जैसा कि हमने आपको कहा था कि हाला समर के चलते बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आप कतर में ना ही सिर्फ लाइव विटनेस कर पाएंगे बल्कि बहुत कुछ आपको एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। तो यार, इस वक्त आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कतर इवेंट डायरी को देखने की कोशिश करें तो जुलाई के दस्तक देने के साथ साथ अगर हमारी जिंदगी में कुछ आने वाला है सो दैट इज कतर टॉय फेस्टिवल। एब्सोल्युटली यू हैड दैट राइट, इसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है बहुत जल्द हमारे तक पहुंचेंगी। लेकिन इतना याद रखना, एक बार फिर से बच्चे बूढ़े और जवान सबके दिल के बच्चे जब निकल कर बाहर आएंगे तो रौनक अगर कहीं लगेगी तो उस जगह नाम है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। लेकिन यार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस बार की अगर समर वेकेशन की बात करूँ तो आपकी प्लानिंग क्या है? आर यू ट्रैवलिंग समवेयर? अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? आर यू गोइंग होम विजिटिंग समबडी और कहीं घूमने का इरादा है? बताओ यार, अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल, मैं जाऊँगी अपने वेकेशन पर। इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द 3rd week of July एंड इस बार मैं अपने घर तो जा रही हूँ लेकिन हाँ, साथ ही मैं केरल एक्सप्लोर करने वाली हूँ। केरल एक ऐसी जगह है जिसे गॉड जोन कंट्री तो कहा ही जाता है जो मैंने आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं की। तो मैंने सोचा है कि इस पर साउथ इंडिया को प्रॉपर बारिश के वक्त मुझे एंजॉय करना है। तो अगर कोई केरलाइट्स हैं जो इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, What would you recommend? केरल की वो खासकर कौन सी जगह है जो मुझे जरूर देखनी है? आई नीड योर सजेशंस प्लीज। 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीन वाइल अरिजीत सिंह की आवाज सुनिधि चौहान का साथ एंड ये अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, It's Hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment, entertainment. Qatar ka number one radio station.
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

पता नहीं। मतलब जो सी खूबसूरत सी आवाज़ सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अगर आपको खबर नहीं तो आप तक खबर पहुंचा दी जाए। Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं तो आ चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन शुरू करवा दूँ इसकी भी बात करने मैं आ ही चुकी हूँ। यार हमने देखा कि किस तरह से अगर हम इस मंथ की बात करें, जून के महीने की बात करें, तो मिर्ची की पूरी टीम अगर किसी कोशिश में लगी हुई थी तो जितनी भी मॉम्स हमारे साथ कनेक्टेड है उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां ऐड करने की, एंड दैट वाज थ्रू मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। अगर अब तक के सबसे बड़े एडिशन की बात करें, सबसे कम्पेटिटिव एडिशन की बात करें, तो वो रहा सीजन 5। अब जून का महीना तो बीता, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। जुलाई आने से पहले ही दिल में बस यही सवाल आ रहा है कि आप सबसे मिले तो कैसे मिले, आप सबसे गुफ्तगु हो तो कैसे हो, एंड इसके साथ आपसे मुलाकात हो तो उस मुलाकात को खास बनाए तो कैसे बनाए। तो बस इस मुहिम के साथ एक बार मिर्ची फिर से लौट रहा है, एंड जुलाई के महीने में अगर कुछ खास अगर आप विटनेस कर पाएंगे तो इस इवेंट का नाम है कतर गॉट टैलेंट। सबसे खास बात यह है कि ये जो कॉम्पिटिशन है इट इज गोइंग टू बी एन ओपन कॉम्पिटिशन, कोई इसमें उम्र की ना बाधा है ना सीमा है किसी टैलेंट की। कहने का मतलब बस इतना ही है, जो भी हुनर आपके अंदर है, अगर आप ग्रुप परफॉर्मर हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपके अंदर मैथमेटिक्स का कोई स्किल है, आप एक मैजिशियन हैं, या तो फिर आप क्रिएटिविटी में आर्ट में काफी आगे हैं, जो भी आपके अंदर का टैलेंट है उसे और निखारने की तैयारी कर लें, बिकॉज जुलाई के महीने कतर गॉट टैलेंट बहुत ही बड़े से मंच में, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आपको ये मौका देगा कि आप आकर परफॉर्म कर सके। एंड अगर आपका हुनर सबके ऊपर भरा भारी, इन दैट केस हो सकता है कतर गॉट टैलेंट की ट्रॉफी आपके हाथ लग जाए। तो बस अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू कर दें, इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस है तो खुद को और शार्पन करने की कोशिश कर लें। बहुत जल्द इसके सारे डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, जरा देखें तो आपके अंदर कितना एंथू है। 5000186 5000186 आई एम वेटिंग फॉर। हाय अंशु, रेस्ट विल स्पीक देयर। मिका सिंह की आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, फिल्म का नाम स्त्री, अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

पुलर जो सिंह श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज है, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब जिस बात का इंतजार है, जिस घड़ी का हम बेकरार होकर बेसब्र होकर वेट कर रहे हैं, जरा उसकी बात हो जाए। इस वक्त फीवर की बात करें तो वायरल फीवर हो या ना हो, लेकिन फुटबॉल का फीवर हर किसी को जरूर है। वेल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सो इट हैज ऑफिशियली एंटर्ड इट्स नॉकआउट फेज। एंड अब एक भी गलती का एक ही मतलब है भाई, सीधा फ्लाइट जो है ना, सीधा आपको घर की तरफ लेकर चलेगी यार। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री इस वक्त अगर किसी ने क्रिएट की है तो वो है कनाडा ने। साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराकर पहली बार राउंड ऑफ 16 में एंट्री मार ली। क्या बात है यार, बधाई कनेडियंस। एंड अब सबकी नजरें इस फुटबॉल जायंट पर जरूर है, लेकिन अगर आज की रात को आप देखने की कोशिश करें तो होना है क्या। वेल, ब्राजील टेक्स ऑन जापान। क्या संभव मैजिक जो है एक बार चलेगा, या तो फिर ये कहें जापान एक बार फिर से कहीं अपसेट ना कर दे। यार जो भी हो, जापान जो है इस वक्त फुल फॉर्म में खेल रहे हैं, इस बात में कोई डिनाल नहीं। साथ ही अगर जर्मनी वर्सेस पैराग्वे की बात करें, या तो फिर नीदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को की बात करें, तो ये भी ब्लॉकबस्टर क्लैशेस हैं। एंड इस बार एक बार फिर से मोरक्को का परफॉर्मेंस जो है काफी धमाल चल रहा है। लेकिन अगर फ्रांस की बात करें तो अपने लीथल अटैक के साथ स्वीडन से वो भिड़ने वाला है। पोर्चुगल रोनाल्डो के एक्सपीरियंस के साथ क्रोएशिया के खिलाफ उतरेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मैचेस जो हर कोई देखने को बेकरार बेसब्र रहेगा, बिकॉज पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया भाई साहब ये काफी कमाल होने वाला है। एंड अगर डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, तो लियोनेल मेसी का जादू अगर किसी के साथ होगा तो वो है केप वर्डे। बढ़िया, तो सबकी सब नजरें जो हैं इस वक्त हिस्ट्री क्रिएट करने वाली टीम पर रहेंगी। क्या आप इस वक्त फीफा फॉलो कर रहे हैं? कौन सी टीम है जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? आई एम ईगरली वेटिंग टू हियर योर व्यूज, योर थॉट्स। आपके हिसाब से इस बार ट्रॉफी है तो है किसके हाथ में? जल्दी मैसेज करो यार, 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सुनो निगम की आवाज महालक्ष्मी अय्यर का साथ इन्हें अगला गाना। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हूं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट चाहिए, ऊ चाहिए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: वेल केकी की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ खूबसूरत गाना इट इज. मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कॉलेज टाइम में ये गाना इतना ट्रेंडिंग हुआ था ना यार. मतलब हर किसी स्टूडेंट के मोबाइल पे अगर ये गाना उस वक्त प्ले ना हो रहा हो ना तो फिर बात ही क्या है.
1: मिर्ची अंशु.
0: देखो हर एक स्टूडेंट के सेलफोन पे तो ये गाना प्ले हुआ था लेकिन हर एक शख्स को अपनी जिंदगी में ये फिलॉसफी फॉलो करनी बहुत जरूरी है. वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. वेल वक्त तो चला है कि कोई तो मोटिवेशन का डोज आपकी जिंदगी में मैं ऐड कर दूं. लेकिन ना यार, आज मैं अपनी जुबानी नहीं करूंगी. कोई तो फिल्म है जिसका एक बहुत ही दमदार डायलॉग है जो मैं आपके बीच पेश करूंगी. आपको दो काम करना है. सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना है कि किस फिल्म से है, किस एक्टर पर पिक्चराइज है और इसका करेक्ट आंसर भेज देना है अपनी आवाज एक ऑडियो मैसेज के जरिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दूसरा काम ये करना है भाई साहब, इस बात को चाहे आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो ना अपनी लाइफ में इम्प्लाई अप्लाई सब कुछ करने की कोशिश 101% करना है. सो हियर वी गो.
2: शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट. आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे. तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा. बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेलो.
0: यार इतना ही कहना चाहूंगी, जो करते हो ना अपनी जिंदगी में हर एक पल उसे दिल लगा के दिल भर के करो एंड उसके बाद देखो लाइफ का हर एक 70 मिनट जो है ना वो कितना खूबसूरत होता है. भाई साहब इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 70 सेकेंड है मुझे ये बताने के लिए कि ये डायलॉग है तो है किस फिल्म से. 5000 1896 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल आदित्य ए की आवाज़ एंड चांद से बाले आप तक पहुँचा दूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: છે
1: મિર્ચી સ્ટોરીઝ સ્ટોરીઝ
2: બસ 24 ઘંટે હી રહેંગી.
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल.
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं.
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ.
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा.
7: मिर्ची, इट्स हॉट.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Aan Show with you. Zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek baar phir se aa chuki hu. And chaliye aap tak ab sahi jawab pahunchane ki taiyari bhi main kar hi chuki hu, lekin kiska? Matlab se kuch der pehle maine aapke beech pesh kiya tha ek dialogue, aapko sunkar identify kar bas mujhe ye batana tha ye hai to hai kis film se and saath hi kis actor par picturized hai. For the sake of people who have just joined, main jaldi se phir se sunati hu. Sunate sunate hi lage ki aapne abhi bhi pehchan liya hai to correct answer kahan bhejna hai? 5001896 पर. Here we go.
1: 70 मिनट है तुम्हारे पास. शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट.
0: ऑलराइट, 70 मिनट की दास्तां के लिए मैंने आपको 270 सेकंड दिए थे कि पहचानना है कि भाई साहब ये है तो है किस फिल्म से. बहुत सारे रिप्लाईज आए, कुछ आवाजें आप तक पहुंचा दी जाएं.
2: मेरा नाम फरूक है और ये जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा है कि 70 मिनट जी लो अपनी जिंदगी, ये कौन सी फिल्म का, ये चकते इंडिया का है.
0: थैंक यू फारूक साहब, आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही. और भी बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, जरा उनकी आवाजें भी पहुंचा दी जाएं.
2: मेरा नाम फारूक है.
0: फारूक भाई, एक बात कहना चाहूंगी, अलग अलग नंबर से रिप्लाई करने से जवाब बदल नहीं जाता.
3: हाय, दिस इज नदीम. ये फिल्म चक दे इंडिया का है, लास्ट मैच के लिए इन्होंने अपना भाषण देते हैं.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो वेरी मच. संदीप थैंक यू सो मच, यूसुफ थैंक यू सो मच, राधिका थैंक्स अटन, इकबाल रियली अप्रिशिएट योर रिप्लाई. अगर इस फिल्म की हम बात करें सो इट इज एग्जैक्टली चक दे इंडिया. वेल, 10th अगस्त 2007 को रिलीज हुई ये फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया सुमित अमीन ने, लिखा जयदीप साहनी ने एंड प्रोड्यूस किया आदित्य चोपड़ा ने. एंड इस फिल्म में अगर कोई नजर आए तो वो है कबीर खान यानी कि शाहरुख खान. एंड उनके साथ क्या आउटस्टैंडिंग एंसेंबल था यार. लेकिन क्या आपको एक बात बताए, फिल्म की एक्ट्रेसेस ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी इस फिल्म ने, इनफैक्ट सारी की सारी लड़कियों ने लगभग 6 महीने तक रियल हॉकी की ट्रेनिंग ली. एंड उन्हें ट्रेन किया था इंडियन विमेंस हॉकी टीम के कोच मीर रंजन नेगी ने, जिनकी लाइफ और जर्नी से ही इंस्पायर्ड ये फिल्म बनाई गई यार. एंड कबीर खान के किरदार को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कई सारे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन जब शाहरुख खान ने रोल किया तो आज की डेट में उनकी जगह किसी और को इमेजिन कर पाना ना यार, ये तो नामुमकिन है. चलिए जी, अपनी जिंदगी के हर एक मिनट को दिल से जिए एंड जो भी करें पूरे दिल से करें. हेमा सरदेसाई की आवाज एंड इस फिल्म से ये अगला गाना आपके लिए, एंजॉय बंदी का नाम अंशु.

0: boys of the Hindi film industry.
1: First reference is always going to be Varun Dhawan, and I'll tell you why. Kyunki Varun ka jo physique hai wo bahut hi proportionate hai. Uske legs bahut hi strong hai. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think sabse fittest insan hamare industry mein is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. Agar aap usko Mount Everest pe chhod do, agar aap usko Registan mein chhod do, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
0: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: Well, संजू राठौर के पावर पैक आवाज और बड़ा मैजिकल ट्रैक इट इज भाई साहब. जब जब भी इंसान आता है ना, इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि अपनी आवाज से, अपने एक अलग ऑरा से किस तरह से म्यूजिक लवर्स की लाइफ में सेंसेशन जो है वो क्रिएट किया जाए. अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि कथक सीखना इतना आसान है, तो सच कह रही हूँ, अपने गुरुजी की इतनी छड़ियाँ जो है ना मैंने बचपन में ना खाई होती. जेन्युइनली वो ताथ ही थे तत्, इस चक्कर में जब जब हमारे पैर रिदम को फॉलो ना करें, उन्होंने कुछ इस तरह से छड़ी मार मार के हमें डांस सिखाया ना, कि अब बताएं तो क्या बताएं. अभी जो है, अगर आपको लगे कि आपको कथक सीखना है, बिल्कुल किसी छड़ी की आवश्यकता नहीं, गुरुजी की भी कमी आपको महसूस नहीं होगी, बस बाहर जाके जरा धूप में खड़े होकर देखो, बिना चप्पल जूते के, बिना मोजे के, उसके साथ देखो, ताथ ही तत, हाय, एक पैर के बाद दूसरा पैर जो आपका ऊपर उठेगा ना, हर तरह का रदम जो है वो खूट खूट के बाहर निकलेगा. वेल, क्या ही करे, सूरज चाचू अपना कोहराम कुछ इसी तरह से मचा ही रहे.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: Well, आपका नाम भी जानते हैं ना, आपका काम जो है और अच्छी तरह से जानते हैं. Having said that, अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को देखने की कोशिश करें तो ये आंकड़ा जो है 46-47 की ओर इशारा कर रहा है. मिनिमम की बात करें, सूर्य समय अराउंड 34 और 35. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से इस वक्त बचे बाबू. हम जानते हैं हाल होता है तो फिर कैसा ही होता है. बाकी कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स ऑल वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: Weather Check, brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.
3: कुछ

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid vala burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेड।
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
5: Salmani to sirf chore kare.
6: Mari choriyan choron se kam hai ke?
7: Mara Qatar Bollywood se kam hai ke?
8: Kam hai ke?
0: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

वेल मधुमती बाक्षी की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की क्या सॉलिड कॉम्पोजिशन, और ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इसे मेरा होना होगा। ना मेरा दिल इतना भी बढ़ा नहीं है जो इतने आसानी से मैं ये कह दूं कि कोई ना तुम मेरे ना हुए ना सही, तुम्हें तो मेरा होना होगा, हर हाल में होना होगा। मतलब तुमने सोचा तो सोचा कैसे कि तुम जो है मेरे ना होगे, बाकी दुनिया में सबके हो जाओगे। ना यार, मैं तुम्हें दूर से देखूं ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे बनो एंड पूरी तरह से बस मेरे बनो। भाई साहब, उस शॉपिंग बैग की बात करी हूँ जो पूरी तरह से सामान से भरा हुआ है, खाली बैग नहीं। मैं इसे दूर से देखूं ये मुझे गवारा नहीं, ये किसी और का हो लेकिन मेरा ना हो ये मुझे और भी बर्दाश्त नहीं। सिद्धार्थ, अगर आपको लगता है कि आपका ऑब्सेशन शॉपिंग से जुड़ा हुआ बस कुछ इसी कदर का है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक बार फिर से, आपकी और हमारी जिंदगी में अगर कुछ शामिल हो चुका है तो वो है दोहा समर ट्रेड एंड शॉपिंग एग्जीबिशन, एंड इट इज गोना रन अंटिल 4th of July ओनली। लेकिन कहां हो रहा है ये? दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पे आपको पहुंचना होगा, चाहे परफ्यूम्स की बात हो, एक्सेसरीज, होम डेकोर, कार्पेट्स, भाई एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। देखो, खाने पीने के बिना गजब के आइटम्स है वहां पर, एंड सच कहूं जो मुफ्त में टेस्टिंग करने का मौका मिलता है ना, उसे कोई छोड़े तो क्या ही छोड़े। वैसे हर बार जब मैं इस एग्जीबिशन पे जाती हूं तो मैं कुछ लाऊं या ना लाऊं, 3-4 चीजें मेरी मैंडेट है। नंबर 1, हनी। भाई क्या गजब वैरायटी मिलती है हनी की। नंबर 2, सैफ्रन। सैफ्रन की शॉपिंग मैं यहीं से करती हूँ, एंड बहुत सारे डेट्स एंड सीड्स भी मैं लेकर आती हूँ। अपना शॉपिंग बैग का पूरा का पूरा किस्सा तो मैंने आपको सुना दिया। अगर लगे जाना है सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, सैटरडे से थर्सडे तक, लेकिन अगर फ्राइडे की बात करें तो दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जाइए, ढेर सारी शॉपिंग करके आइए, लेकिन हमारे साथ टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। अगला अलका याग्निक की आवाज़, शान का साथ, यानी अगला गाना फ्रॉम द फिल्म कल हो ना हो। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

की खूबसूरत सी आवाज सोनिया गांधी का साथ रोचक कोहली का एक तड़का, फिल्म का नाम इश्क विश्क रीबाउंड एंड आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस ट्रैक, तू मेरा बन जा। ये तो बस मैं यही कह रही हूँ, इनसे कह रही हूँ। जिंदगी में मिठास है, साथ स्पाइस का तड़का है। जरा बोले इससे ज्यादा इंसान को चाहिए तो क्या ही चाहिए। अरे आप कौन, हमारा साथ कंपनी जो है बेमिसाल है। हैविंग सेड दैट, अगर मेरे बनने की बात करूँ, अपना बनाने की बात करूँ, तो बस दिल में यही ख्वाहिश है कि जैसे जैसे सैलरी के दिन करीब आ रहे हैं, महज एक दिन की हम दूरी पे हैं, तो अच्छा ये जो एक्सचेंज रेट है इसके साथ अकाउंट का मालम माल लालम लाल कलर जो है ये मेरा बनता रहे, हमेशा ये सिलसिला आपकी और मेरी जिंदगी में चलता रहे। यार पता है मेरे दिल में ना हमेशा एक ख्याल आता है कि ऐसा कोई महीने का दिन होना चाहिए जो हमें अलोकेटेड होना चाहिए, जब बॉस हमसे कहे कि भैया तुम्हें जब सैलरी लेनी हो, महीने के जिस दिन लेनी हो तुम बस ले लो, एंड हाय जिस दिन सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट मुझे लगे ना उस दिन मैं सैलरी लूँ। नहीं, बहुत खुशी होगी, लेकिन दुख तब होगा कि मेरे फ्रेंड ने रोक के रखा था, कुलीग ने रोक के रखा था, लेकिन उसने थोड़े ज़्यादा पैसे में भेजे। इंसानी फितरत। अविंग सिद्धार्थ जरा देखें आज का पैसा क्या ही बोलता है। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.88, इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.85, नेपाली रुपीज 41.34, बांग्लादेशी टका 33.90 एंड इसके साथ ही लंगन रुपीज एक बार फिर से डंका बजाते हुए 92.44। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain.
6: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: ब्रिजेश आंडलिया की आवाज स्वाति शर्मा का साथ और इस गाने के साथ सेलिब्रेशन करना तो बनता है भाई साहब। घड़ी का कांटा जब एक बजे की ओर इशारा करने लगे ना तो मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन मोड बस ऑन हो ही जाता है।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जिंदगी में खुशहाली लाने का काम जो है ना ये घड़ी का कांटा बहुत अच्छी तरह से करता है। वक्त है यार, रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा है। वैसे जब आगे जल्दी जल्दी बढ़ता है तो मुझे इससे थोड़ी नाराजगी होती है कि जरा थम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे भूख लगने का वक्त करीब आता है तो लगता है जरा तेज बढ़ो जी, इतना धीरे धीरे क्यों ही और काहे चल रहे हो यार। इस बात पे एक बात लगी कि यार वक्त धीरे चलता है या जल्दी, ये बात जो है ना घड़ी का कांटा डिसाइड नहीं करती, शायद जिंदगी में कहीं ना कहीं ये हम डिसाइड करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है जब आप हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो लगता है यार वक्त कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है। लेकिन जब मन उदास होता है, किसी बात का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, तब ऐसा लगता है कि वक्त जो है आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। यार कांटा जो है अपनी मर्जी से इत्मीनान के साथ एक ही तरह से हमेशा चलता है। इतना ही कहना चाहूँगी, मन को मर्जी जो है ना ज़रा कम करने दें, क्योंकि वक्त की सबसे कमाल और अच्छी बात यही है कि जैसा भी हो बीत ही जाता है। चलिए जी, अरिजीत सिंह की आवाज में जाने से पहले आपको अगला गाना सुना के जाती हूँ। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल अगर आज का शो अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी तो बस एक थैंक यू अंशु का मैसेज हो जाए। 5000 1896, 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: सच सच बताना, क्या बचपन में आप भी इस बात से कन्विंस थे कि अगर हमने तरबूज का बीज खा लिया तो हमारे पेट में पेड़ उग जाएगा?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और बचपन के कुछ ऐसे मिथ्स रहे हैं जो आज गूगल बाबा क्लियर करते करते थक जाते होंगे, क्योंकि इस मिथ की रियलिटी पता लगे मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बॉस, कि बीज खाने से पेट में कोई पेड़ नहीं उग जाता है। पूरा बचपन मैंने इस डर को सच माना था यार, और बड़े होते होते तो पता लगा कि यार वाटरमेलन के बीज तो उल्टा और अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। बट ये एक लौता ऐसा मिथ नहीं था जिसे कि हम फॉलो किया करते थे और जिससे हम डरा करते थे। ऐसे और भी कई मिथ्स हैं जिनकी छांव में हमारा बचपन गुजरा है, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन मिथ्स और कहानियों से पर्दा उठाया जाए। क्या बोलते हो? तो चलो फिर मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
3: दोनों मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
4: 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.

0: क्या कभी आपने भी घर के कलेश को उल्टी चप्पल से जोड़ने की कोशिश की है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज बचपन के 90s के वो मिथ्स जो हमने जिए हैं और आज तक जीते आ रहे थे, उन्हें मिटाने की मेरी पूरी कोशिश है। ये जो चप्पल है ना, इस चप्पल से हमारी पिटाई होती थी, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन था। लेकिन घर के कलेश से इसका कैसे कनेक्शन था ना, ये तो आज तक नहीं समझ में आया है। जहाँ कहीं उल्टी चप्पल पड़ी होती थी ना, दिल में एक अजीब सा डर होता था कि ओह नो, ये चप्पल आज फिर घर में लड़ाई ना करवा दे। बट जस्ट इमेजिन, लोगों की करनी उनके डिफरेंसेस को हमारे बड़े बोलते थे, जाओ तेल लेकर आओ, और सारा दोष एक उल्टी चप्पल पर जाता था कि इसकी वजह से लड़ाई हुई है। आप वैसे उल्टी चप्पल वाले आइडिया से बाहर आ गए हो, या खानदानी रियासत की तरह इसे भी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ, चूज योर राइट। हाँ, मार्केट में बहुत सारे राइट्स हैं। और फिलहाल के लिए तो मिड डे मोहब्बत यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: दोस्ती का कुछ सुना मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
9: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
10: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
11: खूब मिलेगा, मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: घर में कभी न शाम पड़े झाड़ू दिली थी और न आज दिल दिए।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये ट्रॉमा आज भी हैंगओवर की तरह लटक रहा है यार, कि शाम को झाड़ू नहीं देते। सो मच सो दैट कि मुझे पता है कि इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन आज भी अगर मैं शाम को झाड़ू लगा देती हूँ ना, तो अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अच्छी खासी मैं इंसान बैठे बैठे ना एकता कपूर की फीमेल लीड के बराबर टेंशन लेने लग जाती हूँ कि हे भगवान, मंदिर का दिया बुझ गया, ये तो अपशगुन हो गया। जबकि लॉजिक तो ये है कि बड़े बूढ़े एक जमाने में ना शाम को घर की सफाई करने से इसीलिए मना किया करते थे क्योंकि पहले ना हर घर में सनसेट के बाद बिजली नहीं होती थी और डर ये होता था कि अगर घर की कोई कीमती चीज कचरे में चली गई ना तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सीधा मना ही कर दिया करते थे। DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड लेट मी नो क्या आप आज भी इस बात को फॉलो करते हो। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: मेरे घर में तो क्या, घर के बाहर भी काला कुत्ता नहीं था, फिर भी मैं बचपन में इस मिथ में बड़ा यकीन किया करती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम बच्चे आपस में जाने क्यों इस फैक्ट को मान लिया करते थे कि अगर सर एक बार गलती से टकराए ना, तो एक बार जानबूझकर और टकराना पड़ेगा, वरना काला कुत्ता मुंह चाट लेगा। विच नाउ टू मी इज क्यूट, क्योंकि आई लव डॉग्स एंड ब्लैक इज ब्यूटीफुल। बट आज तक मैंने इस गुत्थी को नहीं समझा कि एक ऐसा डर था यार, जाने ये क्या ट्रेंड था हम मिलेनियल्स के बचपन में, जो हमें इतने उलझलूल में कन्विंसिंग बताए जाते थे। आपके बचपन के कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिनको सुनकर आप बड़े हुए हो? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
2: बोल, कौन रहा है?
3: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
2: 17.5 रुपए
3: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूँ बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कू।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ो कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
7: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भले ही अंजाम फिल्म में SRK वॉज द विलन, लेकिन इस गाने में ना मेरा बड़ा दिल टूट रहा था यार, कि यार शाहरुख जो है वो मनाए जा रहा है माधुरी को, माधुरी मान क्यों नहीं रही है यार, आफ्टर ऑल हीरो तो शाहरुख ही है। मतलब मैं शाहरुख की इतनी बड़ी फैन थी ना कि ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि शाहरुख भी विलन हो सकता है। सो मच सो दैट बाय द एंड ऑफ द मूवी आई डिड नॉट फील बैड अबाउट एनीवन एल्स एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान, व्हेन आई वाज लाइक ओ नो ये तो व्हीलचेयर पर आ गया। इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नाउ मेरे यारा बारी है मान ना मान करो गानों की पहचान की। देखो प्यार अंधा होता है लेकिन कान तो खुले हुए होते हैं, तो बस फिर गौर से सुनो इन दो धुनों को जो मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ। और आपको इन धुनों को सुन के पहचानना है कि ये जो मिक्स की गई है, ये मिक्स करने के बाद दो अलग अलग जब की जाए तो कौन कौन से दो गाने निकल कर आए।

ओके डोकी, नाउ बस इतना सा काम करना है, डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो, और स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: बाजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा।

0: उंगलियां चटकाने से हड्डियां वीक होती हैं, ट्रू या फॉल्स?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। आई नो ये आज भी ट्रू माना जाता है, बट गेस व्हाट, इट इज फॉल्स। अरे ये सिर्फ बचपन का मिथ है यार, ऐसा कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट उंगलियां चटकाने के बाद तो कितना सुकून मिलता है, और वो जो आवाज आती है ना, दैट बेसिकली इज नॉट आवर बोन्स, मगर उंगलियों के जॉइंट्स के वैक्यूम में ना गैस इकट्ठी होती है, तो वो जो नकल क्रैक आता है ना, वो आवाज तभी निकलती है जब हम अपनी उंगलियों को दबाते हैं। सोचा ना था कि एक दिन मैं टीचर बन जाऊंगी, और वो भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट की। बट एज अ किड मैंने कोई भी हरकत करी हो, कैसी भी हरकत करी हो, लेकिन एज एन अडल्ट ना, आई लाइक टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी बेटर। तो ये जितने भी उंगलियां चटकाने के बाद तो कितना सुकून मिलता है, और वो जो आवाज आती है ना, दैट बेसिकली इज नॉट आवर बोन्स, मगर उंगलियों के जॉइंट्स के वैक्यूम में ना गैस इकट्ठी होती है, तो वो जो नकल क्रैक आता है ना, वो आवाज तभी निकलती है जब हम अपनी उंगलियों को दबाते हैं। सोचा ना था कि एक दिन मैं टीचर बन जाऊंगी, और वो भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट की। बट एज अ किड मैंने कोई भी हरकत करी हो, कैसी भी हरकत करी हो, लेकिन

0: साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो। तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स ऑन
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।
4: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60

0: Mitchy helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है, पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव

0: क्यों भाई, चाय पीने से काले हो जाते हैं हैं?
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बचपन में हमें यही कहा जाया करता था कि चाय पियोगे तो काले हो जाओगे, विच नाउ इज समथिंग जिससे कि मैं रिलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि यार जिसका जो रंग है वो वैसा ही पैदा हुआ है, उसको कोई चेंज थोड़ी कर सकता है, ना ही कोई फेयरनेस क्रीम और ना ही चाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, बड़े तो हमारे हमें रोकते थे, टोकते थे इस वजह से, क्योंकि यार चाय इज बेसिकली कैफीन और बच्चों का कैफीन से क्या लेना देना यार। बट उस रोक टोक में ये एक नया मिथ शुरू हो गया था कि चाय पीने से काले हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जितने भी बड़े हैं वो काले क्यों नहीं हुए, हम बच्चे ही क्यों काले होने वाले थे चाय पीने से यार। और ये एक ऐसा मिथ है हमारे बचपन का जिसको कि लेकर हम बच्चों में इतनी चर्चा रहा करती थी, बाप रे बाप, कि अगर गर्मियों की छुट्टियों में खेलने के बाद भी टैन हुआ है ना, तो भी हम कहते थे तूने चाय पी होगी तभी तो इतनी काली हो गई। एंड गॉड नोज हमारा क्या ये जज्बा हुआ करता था कि हमें गोरा ही रहना है और काला नहीं होना है और रंग हल्का नहीं होना चाहिए, कि वी यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ ड्रिंकिंग चाय। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार गोरे हो चाहे काले हो, जैसे भी हो, बस मतवाले हो। आपके बचपन की ऐसे कौन सी कहानियां हैं जो आपने सुनी और सुनते सुनते बड़े हुए और फिर आपको पता लगा कि आइला ये तो सच है ही नहीं। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गमा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटक।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने, हिट गाने।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: च्युइंगम निगली ना तो सालों तक पेट में चिपकी रहेगी, ऐसा सुना था मैंने बचपन में।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और च्युइंगम खाना पाप था हमारे लिए, और हो भी क्यों ना यार, मतलब आज अगर मैं अपना बचपन देखूं और मैं ये मानूं कि मैं अपने बचपन में बड़ी हूं कोई, तो भाई मैं भी मना कर दूंगी अपने आप को कि नहीं नहीं नहीं च्युइंगम नहीं खाते हैं। क्योंकि यार हम च्युइंगम खाते थे और उसके बाद उसे डस्टबिन में डालने के बजाय कुर्सी के नीचे, बेड के सिरहाने के पीछे या सोफे के इधर उधर चिपका देते थे। याद नहीं आ रहा यार, लेकिन इस आलस की वजह थी क्या? बट देयर यूज्ड टू बी इंस्टेंसेस कि हम च्युइंगम्स गलती से निगल भी लिया करते थे। अब बेचारे हमारे पेरेंट्स कहाँ तक निगरानी रखते हम पर, उन्होंने हमें ये बताना शुरू कर दिया कि बेटा च्युइंगम खाओगे ना तो सालों तक पेट में चिपकी रहेगी। और हम तो गूगल बेबीज नहीं थे ना यार, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमारे गूगल होते थे, और उन्होंने जो बोला वो 100% सच। मजाल है कि ये बात जानने के बाद किसी भी बच्चे ने च्युइंगम गलती से भी निगली हो। मुझे याद है मेरी एक कजन ने गलती से निगल ली थी, और वो जो रोते रोते अपनी मम्मी के पास गई कि मम्मी मैंने च्युइंगम निगल ली। हाँ, लेकिन फर्नीचर और दीवारों पर च्युइंगम चिपकाने वाली हरकतें हमारी बड़े होते होते ही गई, उससे पहले कते नहीं गई। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन की आवाज एंड शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक. दिल चाहता है का ये गाना इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना.
0: मिर्ची 90s कैसेट.
1: द टाइटल ट्रैक और कौन सा गाना यार, माय गॉड. मतलब इस गाने की खास बात पता है क्या है कि ये गाना जो है ये बीते कल का ही गाना है. मतलब जो गाना इतनी शिद्दत से कह रहा है कि दिल चाहता है कि कभी ना बीते चमकीले दिन. सैडली आज भी जब ये गाना हम प्रेजेंट में गुनगुना रहे होते हैं ना, तो दिल में एक अजीब सी कसक होती है कि यार ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा बचपन, हमारे कॉलेज डेज सब पास्ट में चले गए. और जब तब ये गाना सुना करते थे ना, तो लगता था कि हाँ गाना ही तो है. बट इसके मायने तब समझ में आए जब धीरे धीरे करके ना बचपन हमारे हाथों से छूटता गया, स्कूल छूटता गया, फिर कॉलेज छूटता गया, फिर नौकरी शुरू हो गई. और जब से नौकरी शुरू हुई है तब से लाइफ एक जैसी सी लगती है. बट वाकई में यार वो जो दिन थे वो ऐसे ही थे जहाँ पर जगमगाते थे, झिल मिलाते थे अपने रास्ते. और हमारे दिल में भाई इतना जज्बा था ना, ऐसा लगता था कि भाई पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, बोलो तुम क्या करना है, हम करके दिखाएंगे. और तभी हम गा दिया करते थे कि ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते. हाय कितने नादान थे नहीं हम. बट इस गाने की सबसे प्यारी लाइन पता है क्या है, वो ये है कि कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए, इसीलिए जो आज है ना उसको जी लो. क्योंकि बचपन में भी हम बड़े ही होना चाहते थे और बड़े होने के बाद भी हमें यही लगता है कि अभी और बड़े हो जाए, अभी और कुछ कर ले फिर खुश हो जाए. नहीं यार, जो है वो अभी है, कल का क्या होगा कल पे छोड़ दो. और अभी जाते जाते यही गाना सुनते हुए जाओ. मैं आपके लिए यही गाना लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और बाकी यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

और अभी जाते जाते यही गाना सुनते हुए जाओ, मैं आपके लिए यही गाना लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और बाकी यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बिल्कुल गर्मा गर्म हम आ गए आपके साथ। अब मिर्ची घड़ी की बात करें जनाब, शाम के 4:03 होने को आ गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: तो हम यूं कहना चाह रहे थे कि रयान से लेकर सी लाइन तक और अलखोड़ से लेकर वखरा तक सब कुछ गर्मा गर्म है। मौसम ने एकदम गर्मी बरसा दी है एंड हमें और आपको ये समझना है कि ऐसे ही मौसम में तो पानी पीने का मौसम जवां होता है। प्लीज अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए। खुले में कोई भी मजदूर भाई काम करता दिखता है तो उसको बताइए कि ये नहीं हो सकता और उसे कहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर से कहे ये यहाँ के कानून के खिलाफ है। वेल, इस उम्मीद में कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अगर कोई सड़क पर कार किसी की ब्रेकडाउन हो रही है, उसकी मदद करने को तैयार रही है। ये वो टाइम होता है जब शायद मौसम अपना चरम दिखा रहा होता है, लेकिन हम इंसानियत के नाते अपना चरम दिखाएंगे। पानी जरूर रखिए पंछियों के लिए, यू नेवर नो कौन सा पंछी आपकी वजह से आया आपके घर का पानी दाना चुककर आपको थैंक यू कह जाए। पहले से उम्मीद में कि हम ये अच्छे काम कर रहे हैं। मस्त मौला गौरव शुरुआत करता है शाम शानदार की। हरारा खतीर बोले तो रियली हॉट सर मिर्ची।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं, मैं राकेश नहीं हूँ। नवाज साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरी बात सुन लो
0: भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू
1: कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी।
3: कैच ऑफिसर ब्राउन, ऑफिसर ब्राउन टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरे ये कनाडा वाली हीर है, ये सैड नहीं है, बड़ी खुश है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और इतना ही कहना चाहता हूँ कि राउंड ऑफ 32 से राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली कनाडा पहली टीम। यस, हम आपको बता दें कल कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था राउंड ऑफ 32 में लॉस एंजलिस के स्टेडियम में, एंड इस बार के होस्ट नेशंस में से एक कनाडा ने साउथ अफ्रीकन टीम को 1-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में एंट्री मार ली है, यानी कि वो अब फाइनली प्री क्वार्टर फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप में पहुंच गए। ऑल दी बेस्ट टू टीम कनाडा, आगे का सफर और मुश्किल होगा इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत और जज्बा है तो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम श्योर इस फुटबॉल में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन कल जो क्रिकेट में हुआ है वो इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा ही खराब दिन था। आयरलैंड से पहली बार हम सीरीज हारे, वो भी लगातार दो मैचेस। शानदार प्रदर्शन गौतम गंभीर का, दूसरी बार लगातार वही गलती की जो पहले मैच में की थी। वैभव को नहीं खिला रहे, पता नहीं किस जमाने की बुराई निकाल ले, लेकिन एक बात तय है कि गंभीर भैया अब गंभीर हो जा, वरना मामला गंभीर होगा तो फैंस और गंभीर होंगे, और चीजें जब गंभीर होगी तो गंभीर परिणाम भी होंगे। इस उम्मीद में कि टीम इंडिया आयरलैंड से हार कर कुछ सबक सीखेगी। मस्त बॉल गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली ये कहते सब हैं, पर इसके लिए काम भी करना पड़ता है। और कतर ने अपना ये काम शुरू किया है वेनेजुएला में। यस यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कतर्स इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप लिखविया का ये अपने ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को शुरू कर चुका है। पिछले दिनों वेनेजुएला में जिस तरह का भयंकर भयावह अर्थक्वेक वहाँ आया था वेनेजुएला में, वहाँ के हालात बहुत खराब है, बहुत सारी जिंदगी अभी भी दाव पर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम्स अपना काम कर रही है। उनमें से एक है कतर इंटरनेश्नल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप लिखविया, एंड आई एम श्योर हमारा कतर ये दुनिया को बताता है कि जब भी बात इंसानियत की आती है हम सबके साथ खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। उस ग्लोबल डिजास्टर के सबसे बड़े मोमेंट में हम वेनेजुएला को उम्मीद यही करेंगे कि वहां जो भी लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं अर्थक्वेक की वजह से, उनको सही सलामत बाहर निकाला जाए और कुछ जिंदगियां अगर बच सकती हैं तो इसके लिए कतर अपना पूरा एफर्ट कर रहा है। और एक एयर ब्रिज बनाकर कतर ने यह मदद की शुरुआत की है, बहुत सारी बधाइयां। मुझे लगता है कि इंसानियत सबसे पहले आती है, बाद में कुछ भी आता है। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव लिखविया की उस पूरी टीम को दिल से थैंक यू कहता है जो यहाँ पहुंची हुई है, और मुझे उम्मीद है हम बहुत सारी जिंदगियों को बचाने में कामयाब होंगे। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, सीधा, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: नदियों पार छोड़ो, सड़क पार करने में धूप ऐसी लग रही, पूछो मत। यही कहेगा, गर्मी अपने चरम फेज पर हमारे कतर को एकदम से झुलसा रही है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: आपको विश्वास नहीं होगा, टेम्परेचर सिर्फ 43 डिग्री था आज, लेकिन इसकी रियल फील 46 डिग्री वाली थी और सरफेस इंपैक्ट के बाद ये और ज्यादा वाली फीलिंग दे रही थी। इन सब के बीच कहीं ना कहीं जबरदस्त गर्मी एंड उसके साथ ही साथ हवाओं के रुख की अगर बात करें तो ये भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उसमें घबराना नहीं है, ये लू वाले थपेड़े हैं जिनको हमें अच्छे से अपना मुंह ढक के निकाल लेना है, सनस्क्रीन का लोशन लगाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि बॉस के सामने चालाकी से ऑफिस में बैठ के अपना समय बिताना है। हाँ जी, एसी के सामने ध्यान रखना है, मैं भी यही कर रहा हूं। वैसे अगर बात करें, पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 20% कल के मुकाबले कम, लेकिन ये कब बढ़ जाए यू नेवर नो। सो कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप हाइड्रेटिंग योर बॉडी एंड कानों का हाइड्रेशन हम बरकरार रखें एंटरटेनमेंट से। मिर्ची पर इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
2: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
1: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot. Bollywood Boldal.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6
8: FM Mirchi 1. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: अगर इस छुट्टी पे कहीं वेकेशन नहीं जा रहे हो तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। यस मस्त मौला गौरव आपके साथ है देवी और सज्जनों, और हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव समर मंथ के लिए लॉन्च किया है, समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस समर 2026 स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स में हमारे और आपके बच्चों के लिए बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एजुकेशनल एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यस और इसकी टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक की। बच्चे 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच इस समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का हिस्सा बनेंगे और यहां पर सीखेंगे ढेर सारी एजुकेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उनको आने वाले टाइम में भी बहुत काम आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स और स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, यानी कि इंक्लूसिविटी काफी हाई है और इसी के साथ लर्निंग भी होगी, फन भी होगा, मस्ती भी होगी एंड नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका भी, और पेरेंट्स के लिए बोनस कि मतलब बच्चों से कुछ घंटों के लिए छुटकारा मिलेगा। 9 से 1 किसी एक्टिविटी क्लास में जाएंगे तो मम्मीज अपनी पार्टीज कंटिन्यू कर पाएंगी किट्टी विट्टी वाली, है जी। और इन सब के बीच इतना ही कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे वैसे भी घर में रह के या तो मोबाइल करते हैं या फिर आपसे कंप्लेन करते हैं, मामा आई एम गेटिंग बोर्ड मुझे मोबाइल दो ना, तो कम से कम बच्चे कहीं अच्छी जगह इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ अच्छा ही सीखेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जल्द अनाउंस होगी तो आपको नजर बनाए रखनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एंड ये जैसी खबर आप तक पहुंचेगी तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइएगा ताकि आपका बच्चा इस एक्टिविटी कैंप का हिस्सा बन पाए और अपने लिए समर कैंप में कुछ अच्छा सीख पाएगा। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
3: Catch Officer Brown.
6: Officer Brown.
3: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1
12: It's hot. Kaise

0: भैया देखिए इस गाने का हमारा अपना वर्जन है अरिजीत सिंह जी के अलावा, कि बातें ये कभी ना तू भूल ना, कोई तो स्कैमर कॉल करेगा,
1: मस्त मौला गौरव।
0: और इसी बात को हमें याद दिलाने के लिए वॉर्न किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। बहुत सारे मजदूर भाई होते हैं जिनको लोग झांसा देते हैं कि हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, बस तुम हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हमें ये याद दिलाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रिलेटेड अगर कोई भी फी या पेमेंट है तो वो उनके ही उस हैंडल पर होती है, ऑफिशियल हैंडल पर, ऑफिशियल अप्रूव्ड जो चैनल्स है, जो कि mol.gov.qa है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का mol.gov.qa। इसके अलावा अगर कोई भी अपने प्राइवेट अकाउंट में पैसे भरवा रहा है तो वो स्कैमर ही है। और मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि अपनी कभी भी बैंकिंग या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑफिशियल एंटिटी से शेयर मत कीजिए, चाहे वो कितना भी माहौल बना के कि मैं कतर पुलिस से बोला, मैं फलाना डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, फटाफट हमें अपना डिटेल दो, एंड वो आपसे अरबी में भी बात कर सकता है, आपको डरा सकता है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि यार ये आदमी मुझे लीगल नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बस तुरंत उसका फोन काट दो, किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन कोड, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी शेयर ही मत करो, और तुरंत उस नंबर के बारे में कॉन्टैक्ट कर बताओ हॉटलाइन नंबर 16505 पर। याद रखो 16505 ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नंबर आपके लिए दिया है, जहां पर आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हो हॉटलाइन पर, और ऐसी किसी स्कैम कॉल के बारे में तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हो info@mol.gov.qa info@mol.gov.qa। ये कुछ जगहों पर आप रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी इंसिडेंट की, लेकिन कभी भी घबरा कर किसी को अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है, ये याद रखना है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बोला है मजदूर भाइयों आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके पैसों को कहीं और चंपत करा के ले जाई। 89.6 मिर्ची वन पे जो हम कहते भैया तुम समझा, सावधानी बरतिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनी जेब को भी। मिर्ची थॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
7: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
8: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
9: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
10: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
11: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हाँ जी, डांस लाइक दिस हारी संधू के आवाज में सुनाया किसने? मस्त मौला गौरव। और देवी और बारी आ गई है उस इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपको बढ़ाने की जो हमारे कतर की मैरिटाइम सर्विसेज को लेकर है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने सस्पेंड किया है टेम्परेली सेलिंग एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मैरिटाइम एक्टिविटीज आज यानी कि 29th ऑफ जून से अंटिल फर्दर नोटिस एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि हमारे आपकी पब्लिक सेफ्टी बनी रहे। इस बात को याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है मैरीटाइम वेसल्स इंक्लूडिंग लेजर बोट्स, फिशिंग बोट्स, जेट स्कीज एंड ऑल अदर मैरीटाइम वेसल्स, इन सब की जो एक तरह से यूज है वो सेलिंग को सस्पेंड किया जाता है। किसी भी तरह की मैरीटाइम एक्टिविटी इस वक्त नहीं होगी अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक अगली नोटिस नहीं आ जाती तब तक ये टेम्पररी प्रिकॉशनरी मेजर पर सस्पेंड किया गया। और इस मेजर का ख्याल हमें और आपको ही रखना है, क्योंकि अथॉरिटीज जब हमसे कुछ कहती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए इस बात को मानिए और किसी भी तरह की मैरीटाइम एक्टिविटीज का हिस्सा मत बनिए, चाहे फिशिंग बोट हो, जेट स्की हो, मैरीटाइम वेसल हो, लेजर बोट्स हो, प्लीज अवॉइड सेलिंग। ये क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने। बाकी आप समझदार हैं एंड मस्ती करनी है तो दोस्तों यार के साथ बैठो ना, हैं? ये तो वो टाइम है जब एक साथ बैठ के आइसक्रीम खाओ, अपने बचपन के स्कूल की यादों को ताजा करो। इस थीम पे कोई किट्टी कर लो, मिर्ची इज हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 25.91 INR, बोले तो 25.91 रुपए भारतीय मुद्रा, 1 कतरी रियाल के बदले लंकन रुपीज 92.44। वही अगर हम बात करें तो तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छो दाजु, 1 कतरी रियाल बदले 41.33 का भल रेट रहता है, हाँ जी 41.33 को रेट छो बहनी, घर भेजना तो राइट टाइम छो। अगर इसके बाद हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें, 1 कतरी रियाल के बदले जनाब 76.85 पाकिस्तानी रुपीज, और बंधु बांग्लादेशी टका तो 1 कतरी रियाल के बदले 33.90 तो 33.90 बांग्लादेशी टका तो रेट रहते हो। हाँ जी मस्त मोल गौरव के साथ एंटरटेनमेंट फुल चल रहा है, बस मिर्ची ट्यून किए रहो, इट्स हॉट आज तो।

हाँ जी, कत्ल गाना खत्म हुआ और आगे आपके साथ बातों से आपसे ढेर सारी बातें करने वाला। सजनों, एक चीज जो मुझे बहुत तलाश होती है वो होती है सैलरी। महीने में काश दो तीन बार आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए कल आएगी, इसका मुझे पूरा इंतजार है। लेकिन रेट्स आज क्या चल रहे हैं? राइट नाउ एक कतरी

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: शाश्वत सजदे मधुबंती बख्शी की आवाज में ये अगला गाना शरारत दोस्तों, ये आपको सीखनी नहीं पड़ती है, बचपन से खुद ब खुद आ जाती है। मस्त मौला गौरव आपके साथ शाम के 6:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, तो मस्त मौला गौरव यही बताना चाहता है कि अब PSCC ने एक्सपेंड कर दिए 24 आवर अर्जेंट केयर सर्विसेज अपने अलबाब हेल्थ सेंटर पर।
2: #974
0: ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे और आपका ख्याल रखने के लिए, सेहत का ख्याल रखने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है अपनी 24 आवर एडल्ट एंड पीडियाट्रिक अर्जेंट केयर सर्विसेज अलबाब हेल्थ सेंटर पर। संडे June 28th जो यानी कि कल बीता है, तब से ये शुरू हो गया है। और ये बेसिकली इसीलिए है कि कभी अर्जेंट केयर सर्विसेज की हो और देर रात भी जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं ये किसी को दौड़ना भागना ना पड़े, अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर अलबाब में भी जाकर आप PSCC की अर्जेंट केयर नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ 24 आवर एडल्ट अर्जेंट केयर सेंटर्स अब 16 हो गए हमारे कतर में, यस 16। एंड अगर हम पीडियाट्रिक अर्जेंट केयर यूनिट की बात करें तो ये 11 पहुंच चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट कतर के हर कोने में अब बच्चों के लिए बड़ों के लिए ये 24 आवर अर्जेंट केयर सेंटर्स बन चुके हैं। एंड ये आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अपने हमेशा नजदीकी हेल्थ केयर सेंटर का पता रखना चाहिए ताकि आधी रात कभी कोई मुसीबत आए हेल्थ से रिलेटेड तो आपके पास फटाफट से वहां पहुंचने की सुविधा हो। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची थॉट।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
4: बोल कौन रहा है?
5: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
4: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
5: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
4: तूने जेब काटी
5: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
4: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
5: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
4: जरा वापस दे दो यार।
5: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मेहनत पे पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
4: 17.5 रुपए
5: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
4: कर दे, मैं कर दूंगा।
5: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
4: क्या करूं बताओ?
5: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
4: सॉरी
5: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची वन पर गलत कंपनी से नहीं सही कंपनी से लगवाना है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे वो कैमरा जो हमारे और आपके घरों से लेकर हमारे प्रमाइसेस में इंस्टॉलेशन के लिए काम आते हैं ताकि आने वाले टाइम में सिक्योरिटी बढ़े, उसको लेकर MOI ने कुछ अर्ज किया है।
2: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, अगर आप अपने आसपास सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरा लगा रहे हैं या आप ऐसी फर्म हैं तो आप याद रखिए, आपको इंस्टॉल कराना है इसे लाइसेंस एंड एक्रेडिटेड कंपनी से, यानी कि वो कंपनीज जो अथोराइज्ड हैं और इनको लाइसेंस मिला हुआ है और वही ऑफिशियल स्टैंडर्ड से बिल्कुल कंप्लायंस करती हैं, और आपको उन्हीं से लगवाना है। और ये कहीं ना कहीं सेफगार्ड करता है प्राइवेसी को और हमारी सेफ्टी को और स्टैंडर्ड करता है, स्ट्रेंथन करता है। एंड अप्रूव फर्म जब इस तरह का कोई भी कैमरा इंस्टॉल करती है तो वो किसी प्रकार का कोई सस्ता मामला नहीं रखती है, क्योंकि उनके पास बकायदा जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक्रेडिटेड प्रोवाइडर से ही इस तरह के सिक्योरिटी कैमरा का इंस्टॉलेशन कराते हैं तो वो आपकी भी सेफ्टी रखता है, क्राइम को भी प्रिवेंट करता है और सही लोगों को डिटेक्ट करने में समय में भी जल्दी से काम आता है। तो भाई अगर आप इस तरह का कोई भी सिक्योरिटी कैमरा अपने किसी प्रमाइसेस में इंस्टॉल करा रहे हैं, मेक श्योर वो लाइसेंस एक्रेडिटेड कंपनी हो और उसको खुद पता हो कि हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है डायरेक्टरेट, उन्होंने क्या उनको गाइडलाइंस दी हुई है। इस उम्मीद में कि आप अपने यहां इस तरह के कैमरे लगाते हैं ताकि भविष्य में कभी कुछ हो तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसी कैमरा सिस्टम को लगवाइए एंड आप भी सेफ रहेंगे और कतर के माहौल को भी सेफ बनाए रखेंगे। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: उड़ी जाए, ये जब गेंद को मारते थे तो गेंद भी उड़ उड़ के जाती थी। मॉडर्न एरा का एक ऐसा खिलाड़ी जिसको हमने विलन से सुपर हीरो बनते देखा, बात कर रहा हूँ बेन स्टोक्स की। विराट कोहली को बहुत पसंद है ये नाम, वो हमेशा फील्ड पर बेन स्टोक्स करते भी रहते थे। मुझे याद है बेन स्टोक्स की तारीफ हर क्रिकेटर करता है, और बेन स्टोक्स अब शायद हमें क्रिकेट के मैदान पर तो नहीं दिखेंगे। यस, बेन स्टोक्स इंग्लैंड का वो ऑलराउंडर जो कि एक वर्ल्ड कप T20 में भाई ब्रेथवेट से खाते हैं 4 छक्के और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल ओवर में हरवा देते हैं, लेकिन 3 सालों बाद बंदा वापसी करता है 2019 वर्ल्ड कप में। फिनाले में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी बैटिंग करता है कि इंग्लैंड के लिए पहाड़ से लक्ष्य को भी सिद्ध करता है और लेकर आता है टीम के लिए घर में वर्ल्ड कप। एंड पहली बार इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप जब जीता तो पूरी दुनिया में बेन स्टोक्स की तारीफ हुई। वो बेन स्टोक्स ने कल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और इतना ही कहना चाहता हूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस एरा, और हमें लगता है कि हम उनकी बैटिंग से लेकर उनकी बॉलिंग तक को हमेशा याद रखेंगे। और जिस तरह से 2016 में कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 छक्के मारकर उन्हें इंग्लैंड का सबसे बड़ा विलन बनाया था, 3 सालों में वापसी करना कोई उनसे सीखे। और मैंने क्रिकेट में एक ही चीज सीखी, बेन स्टोक्स से हार ना मानना और पलट कर फिर से हीरो बनना। ये कलाकारी उन्होंने की थी। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल आपके साथ है मस्ट फॉलो गौरव। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. एक सीरियल किलर, एक डिसग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
1: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेड.
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी.
0: Catch Officer Brown.
3: Officer Brown.
0: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
4: दोस्ती का एक उसूल है मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
5: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
6: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
7: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली ये कहते सब हैं, पर इसके लिए काम भी करना पड़ता है। और कतर ने अपना ये काम शुरू किया है वेनेजुएला में। यस
1: #974974
0: यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कतर्स इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप लिखविया का ये अपने ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को शुरू कर चुका है पिछले दिनों वेनेजुएला में, जिस तरह का भयंकर भयावह अर्थक्वेक। वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली ये कहते सब हैं, पर इसके लिए काम भी करना पड़ता है। और कतर ने अपना ये काम शुरू किया है वेनेजुएला में। यस
1: #974974
0: यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कतर्स इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप लिखविया का ये अपने ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को

के कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप लेखविया, एंड आई एम श्योर हमारा कतर ये दुनिया को बताता है कि जब भी बात इंसानियत की आती है हम सबके साथ खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उस ग्लोबल डिजास्टर के सबसे बड़े मोमेंट में हम वेनेजुएला को। उम्मीद यही करेंगे कि वहाँ जो भी लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं अर्थक्वेक की वजह से, उनको सही सलामत बाहर निकाला जाए और कुछ जिंदगियाँ अगर बच सकती हैं तो इसके लिए कतर अपना पूरा एफर्ट कर रहा है और एक एयर ब्रिज बनाकर कतर ने मदद की शुरुआत की है। बहुत सारी बधाइयाँ। मुझे लगता है कि इंसानियत सबसे पहले आती है, बाद में कुछ भी आता है। 89.6 मिर्ची वन पर मस्मोल और गौरव लेखविया की उस पूरी टीम को दिल से थैंक यू कहता है जो यहाँ पहुंची हुई है, और मुझे उम्मीद है हम बहुत सारी जिंदगियों को बचाने में कामयाब होंगे। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: Helpline?
1: Check. Hi, Anjali. Mercy Helpline. Ball.
0: You know, I love twinning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
1: Hey, to galat thodi bol raha hai. Ladke skirt mein thodi acche lagte hai, Anjali.
2: Mast joke mara re. Ye has re halkat has.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: बदतमीज दिल बेनी दयाल शफाली अलवरीज की आवाज में सुनाया किसने? एंड फिलहाल के लिए हम भी सुना रहे हैं शाम के 7:08 पर कितना मैंगो बिका इसका काउंट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: भैया 187,300 केजीज 187,300 किलो आम बिका है। Yes, इस बार का हम्बा एग्जीबिशन रिकॉर्ड तोड़ रहा, पिछली बार से लगभग डबल आम ट्रिपल आम बिका है। एंड बड़ी बात यह है कि इस दौरान 155,000 से भी ज्यादा लोग इस 10 दिन के हम्बा फेस्टिवल में शामिल हुए। और आखिरी दो दिन की बात करें दोस्तों, ऐसा लगा था पूरा कतर सिर्फ मैंगो फेस्टिवल में मैंगो ही खाने आ गया। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहूंगा कि सूक वाकिफ का अब तक का सबसे लीडिंग सीजनल इवेंट हो चुका है इंडियन मैंगो एग्जीबिशन, हम्बा इंडियन मैंगो एग्जीबिशन। एंड आई एम श्योर 10 दिनों में इतना आम तो हम लोगों ने खा लिया है कि अब अगले साल इस फेस्टिवल का फिर इंतजार करेंगे। लेकिन तब तक चूड़ी की बात आई है तो आइए बैंगल सुनते हैं संजीव राठौड़ की आवाज में मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gabbana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गमा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: Ja Simran, ja jeele apni zindagi, ja beta, ja.
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Kalanga.

0: ले जाएं जाने कहां ये हवाएं। भैया फिलहाल तो अगर स्नीजिंग की हवाएं चल रही हैं, कफिंग की समझ लीजिए आपको भी वो मौसमी बुखार आ गया है। लेकिन इन सब के बीच पेडियाट्रिक बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल्स की बात होती है, हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन अनाउंस कर दी है 2 न्यू स्पेशलाइज सर्विस इन पेडियाट्रिक एलर्जी। यानी कि अगर बच्चों की स्किन एलर्जी टेस्टिंग की बात आए तो अब आपको एग्जैक्ट पता लगने वाला है कि एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसमें फूड एलर्जेंस कौन कौन से हैं, फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट, ये सब कुछ अब आपको मिलेगा, वो भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। और ये बाकायदा खुद हमसे अब कह दिया है हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने, एडवांस 2 तरह की पेडियाट्रिक एलर्जी डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू कर दी गई है। और ये आने वाले टाइम में बच्चों को होने वाली स्किन एलर्जी टेस्टिंग को एक्यूरेट बताएगी और उस फूड एनवायरमेंटल एलर्जेंस को भी पता पाएगी जो फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट के थ्रू पता लगने वाला है। एंड ये बताता है कि और ज्यादा आसान होगा अब बच्चों को, यू नो, किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो हमारे लिए। एंड ये हर दिन के साथ जो मेडिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, ये बताता है हुकूमत हमारी सेहत का कितना ख्याल रखती है। थैंक यू टू हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन, वो सारे स्टाफ जो लगातार लगे रहते हैं हमारी सेवा के लिए, उन सबको दिल से शुक्रिया। कतर में हम महफूज हैं और हमारी सेहत भी महफूज है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ की हुकूमत। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

जुबिन नौटियाल की आवाज में लुट गए हम पहली मुलाकात में, हम भी आप पर दिल लुटा बैठे। लेकिन फिलहाल आपका दिल अगर मैरिटाइम एक्टिविटीज में लगता है तो फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने इसे टेम्परली सस्पेंड कर दिया है। यस, मिर्ची पर मस्तमौला गौरव, आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने हम सबसे यही अर्ज किया है कि हम किसी भी तरह की मैरिटाइम एक्टिविटी या फिर यूं कह लें जेट स्की लेकर निकल रहे हैं, फिशिंग बोट लेकर निकल रहे हैं, लेजर बोट्स लेकर जा रहे हैं, मैरिटाइम वेसल्स किसी तरह का लेकर नहीं जा सकते क्योंकि सेलिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। सारी मैरिटाइम एक्टिविटीज को इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ जून 29th यानी कि आज से सस्पेंड किया गया है अनटिल फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक हमें बताया नहीं जाता प्रिकॉशनरी मेजर्स पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है, हमें बिल्कुल किसी मैरिटाइम एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बना है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने इसे टेम्पररी सस्पेंड किया है। अगली नोटिस तक जब तक नहीं जाता तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी अपनी बोट है, फिशिंग बोट है, जेट स्की है, उसे लेकर पानी में नहीं उतरना है वरना किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को आप समझिए। वेल, इसी उम्मीद के साथ कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की इस टेम्पररी सस्पेंशन का ध्यान रखेंगे और किसी तरह की मैरिटाइम एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। मस्त बोला, आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
5: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: अमुशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

गुरु रंधावा की आवाज में नाच मेरी रानी किसने सुनाया? वैसे फिलहाल के लिए रानी नाच रही है, नाचने दीजिए, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, समर कैंप एक्टिविटीज बहुत सारी जगह चल रही हैं एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने भी इसे आपके लिए शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे छुट्टियों में जब घर पर होते हैं ना तो उनका ज़्यादातर दिमाग होता है कि गेम खेल रहे, टीवी लगा लें, यूट्यूब पे चले जाएं, अपने मोबाइल पे बैठ जाएंगे, अपने टैबलेट पे बैठ जाएंगे। प्लीज़ उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए आप इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी उनका यू नो

और फिर स्कूल खेलने के 5 दिन पहले हम पूरे होमवर्क करने की तैयारी करते थे और फिर बिना होमवर्क किए जब कॉपी लेके स्कूल में जाते थे, देत दनादन देत दनादन। तो भाई वो गलतियां आज के बच्चे ना करें, हम यही चाहेंगे इस उम्मीद में कि आप अलग अलग समर कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ के कतर में अलग अलग जगहों पर अनाउंसमेंट है, जरूर लेकर जाइए अपने बच्चों को, उनको एक्टिव बनाए रखिए। मस्मोलोग और लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार लेकर यहीं मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: mye i helplein.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है, पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना, तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रॉक, रॉक.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

أشهد أن لا

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन 5 4 3 2 1 गो।
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga.
3: Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. Lekin ye bhi utna hi sach hai ki agar ye gana kisi choti film ka hissa na hota, to shayad aaj aur zyada log iske bare mein baat kar rahe hote. और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है. आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं. जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं. ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है. और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना, तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते. कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था.

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: मुर्गा मुर्गा मिर्ची मुर्गा।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता, अब रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे ही नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: या फिर एक और टूटे दिल की आवाज।
1: सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना,
0: या फिर ये वाला एंथम।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। यू हर्ड दिस सॉन्ग इन रावण, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
10: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। सर आज सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
2: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 2।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है, और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
2: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
3: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलाम मोहम्मद कासिर नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो बढ़िया सी स्माइल दीजिए, उसके बाद ये जो हम गाना सुनने वाले हैं नाइट इन लंदन का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में, इस गाने का वीडियो देखिए। अगर आपको 60s वाला लंदन देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की शुरुआत करते हैं ना ओ माई लव से, उससे पहले जो गिटार बज रहा है वो इस गाने की वीडियो में एक नाव पे बैठा गोरा बजा रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद आया आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम। मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम किस छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लग रहा
4: है? नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग अब्रॉड में हुई है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म्स इज इवनिंग इन पेरिस। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, एंड द क्रेडिट गोज टू फिल्म के सिनेमाटोग्राफर गोपी कृष्ण। डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट ये ना सुनने में आता है कि पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति सामंता सिर्फ 10 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि तब पेरिस जाके शूटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और ये भी सुनने में आता है कि जो जो लोग इस यूनिट में शामिल थे ना 10 लोग, उनको जो पेमेंट की गई थी वो काफी कम थी। क्या पेरिस घुमा दिया ना, पैसे काय को मांग रहे हो। अच्छा, इसका जो टाइटल ट्रैक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग है। तो कई लोगों के साथ उस टाइम ऐसा हुआ कि जो थिएटर लेट पहुंचे उन्होंने गाना मिस कर दिया, तो उन्होंने दोबारा से मूवी देखी वो गाना देखने के लिए। मस्त पेरिस की गोरियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब इस गाने में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: आज ऐसा

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची इट्स हॉट।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

अफ्रीका में हिंद, ये एक फिल्म का नाम है, आपको पता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। 1939 की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग अफ्रीका में हुई थी। तो वैसे अगर आप सोचें तो बाहर अब्रॉड में शूट होने वाली पहली फिल्म इसको माना जाएगा, हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। फिर 1954 की एक फिल्म नाज भी थी जिसकी शूटिंग अब्रॉड हुई थी, लेकिन जो फिल्म जिसकी शूटिंग एक्सटेंसिवली अब्रॉड हुई थी, यूरोप में हुई थी, वो थी संगम। फिर जिसने बाद में ट्रेंड भी चलाया था बाहर जाके फिल्में शूट करने का, या यू नो वो वाली फिल्में जो आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो। इनफैक्ट लव इन टोक्यो में ना आशा पारेख जी ने कुछ हेयर क्लिप्स यूज की थी, उनको बाद में लव इन टोक्यो हेयर क्लिप्स नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म के इस गाने के ऑडियो में जापान का फ्लेवर तो है ही, इसके वीडियो में भी है। यस, इसके वीडियो में आपको 1960s का टोक्यो जापान देखने को मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मिड और लेट 60s में ऐसी काफी मूवीज आई थी जो अब्रॉड शूट हुई थी और उनके टाइटल में भी बाहर की सिटीज का नाम था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे लव इन टोक्यो, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, और ये ट्रेंड एक्चुअली जिस फिल्म ने शुरू किया था ना उसके नाम में किसी बाहर के शहर का नाम नहीं था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी एक्सटेंसिवली यूरोप में हुई थी। दिस मूवी वॉज संगम, मतलब 1964 की फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कपल अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहा है, क्या बात है। पर अभी जो हम इसका गाना सुनने वाले हैं वो तो अपना यही ऊटी में ही शूट हुआ था। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी, कंपोज बाय शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: मेहरबान लिखूं

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Mirchi Helpline, what is the question?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पर ये गुल जो खिले थे कौन से गुल थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ट्यूलिप्स हैं। तो इस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग नेदरलैंड्स के लिस्सा शहर के केओकेनहॉफ गार्डन्स में हुई थी ना, जहाँ के ट्यूलिप्स दिखाए गए हैं। भाई दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बगीचा है 32 हेक्टेयर के एरिया में, और कुछ 7 मिलियन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस जगह पे शूट करने का सजेशन यश चोपड़ा साहब को खुद अमिताभ बच्चन साहब ने दिया था, बिकॉज शूट से 1 महीना पहले ही वो वहाँ पे घूम के आए थे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बगीचे। इसी बात पे सुंदर सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी चीज विथ चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
1: बोल, कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन।
10: It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on

पुरानी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डायनामिक वाइब्रेंट मेन फिरोज खान साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बंदे ने हिंदी फिल्मों में फॉर्मूला वन कार रेसिंग इंट्रोड्यूस की थी 1972 की फिल्म अपराध में। जर्मनी में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि द फर्स्ट फिल्म टू गेट शॉट इन अफगानिस्तान वाज खुदा गवाह। नो नो नो नो नो, पहली हिंदी फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी वो थी 1974-75 की धर्मात्मा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए अफगानिस्तान का पट्टा आने सा तरसता था। वो वैसे इतनी सुंदर थी यार, ऊपर से उनका जो ये कैरेक्टर दिखाया गया था रेशमा इस फिल्म में, वो अलग ही गजब धारा था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चांटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चांटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
9: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
10: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
11: खूब मिलेगा, मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

पुरानी फिल्में और गाने जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो 1970 की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पिक्चराइज्ड ऑन मनोज कुमार एंड सायरा बानू, ये आपको पता है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। अनदर फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी, जो कि देवानंद साहब की फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर थी, उसका गाना फूलों के रंग से वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट आप जब ये गाना देखो तो उसमें बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस होटल ग्रिम्सल होटल भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये गाना ही मिल सकता है सुनने को पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

भाई वैसे तो हिंदी फिल्मों में एक्सटेंसिवली फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने का ट्रेंड संगम फिल्म ने शुरू किया, लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में थी जो उससे पहले फॉरेन लोकेशंस पे शूट हो चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई थी और वो फिल्में चली भी नहीं थी। जैसे 1960 में शम्मी कपूर साहब एंड पद्मिनी की एक फिल्म आई थी सिंगापुर, जिसका एक गाना शूट हुआ था सिंगापुर में। फिर 1962 में हांगकांग नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें बकायदा बीच साइड पे एक पार्टी चल रही है उस टाइप का एक गाना है जो हेलन जी पे पिक्चराइज्ड है, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर ऐसा कुछ गाना है वो। चलिए यहाँ पे हम एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची।

फॉरेन लोकेशंस में शूट हुई हिंदी फिल्में और हिंदी गाने पुराने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसके कुछ पार्ट फॉरेन लोकेशन पे शूट हुए थे ये थी 1960 की फिल्म कॉल्ड बेवकूफ, जिसमें किशोर कुमार एंड माला सिन्हा थे। इसकी कुछ शूटिंग इटली में हुई थी। ऑल्सो माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र स्टारर आंखें फिल्म जो थी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी, 1968 की सुपर हिट फिल्म। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग अगर बेरूत में हुई थी तो वो इस फिल्म की। इनफैक्ट इसका जो गाना है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जिसमें फिल्म के तीन किरदार भिखारी बन के घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बेरूत की सड़कें हैं। इस फिल्म की शूटिंग जापान में भी हुई है। बट इसका एक और गाना है जो बहुत सुंदर है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, रवि की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

One of the most iconic Hindi song ever shot on a foreign location is undoubtedly Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hu Charu aapke saath. Chalo gaane ki video mein Italy mein Venice mein gondola ride hai, bahut sundar hai, jisko by the way film ke director Shakti Samanta ne khud shoot kiya hai, unke kisi assistant ya cinematographer ne nahi. To video to bahut badhiya hai, lekin jis tarah se iske audio mein wahan ki tune wahan ke lyrics ko include kiya gaya hai na, that is so beautiful. Hats off to R.D. Burman. आशा भोसले जी का ये उनका गाया हुआ फेवरेट गाना, कमाल तो लिखा ये आनंद बख्शी साहब ने. और आपको पता है इसमें शुरुआत का जो वो लाला लाला वाला वोकल्स है और वो जो इटालियन में गा रहे हैं, वो एक्चुअली एक इंडियन ने गाया है, उनका नाम है शरद कुमार. तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची इट्स हॉट।
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

भाई यश चोपड़ा साहब ने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को इतना पॉपुलर बना दिया कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ही वहाँ पे हिंदी फिल्मों की या गानों की शूटिंग की शुरुआत की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली हिंदी फिल्म जिसकी स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी वो थी 1964 की संगम। यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी वो थी 1985 की फासले। बट जिस फिल्म से यश चोपड़ा वाला स्विट्जरलैंड पॉपुलर हुआ वो थी 1989 की चांदनी। और इस पर्टिकुलर गाने को जो शूट किया यश चोपड़ा साहब ने, ये वादियों में बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के जो सारी की सारी ये लेगेसी जो है इसकी शुरुआत इसी फिल्म से तो हुई थी। श्रीदेवी ने जो साड़ियां पहनी है वो क्या लगी है भाई, कमाल है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट
5: 89.6
4: मिर्ची।
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 1964 की मूवी संगम वो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो अगर ट्रेंड सेटिंग की बात करें ना कि जिसने फॉरेन लोकेशंस को ऐसे पॉपुलर बना दिया, देन यस दिस वॉज द फिल्म। इसी के बाद वो सारी फिल्मों की झड़ी लग गई थी ना, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो, अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर इससे पहले की हम बात करें तो काफी मूवीज थी जिसके कुछ पोर्शंस या गाने फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए थे। जैसे एक तो पूरी फिल्म थी 1939 की अफ्रीका में हिंद, ये पूरी की पूरी अफ्रीका में शूट हुई थी। फिर 1954 की एक नाज नाम की फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार थे, इसके कुछ पोर्शंस इजिप्ट में शूट हुए थे। देन 1960 में बेवकूफ नाम की फिल्म जिसमें किशोर कुमार माला सिन्हा थे, वो इटली में उसका कुछ पोर्शन शूट हुआ था। फिर 1960 की सिंगापुर, फिर 1962 की हांगकांग। और इनमें से काफी फिल्मों में ना ऐसा भी होता था कि यूनिट के जिन लोगों को फॉरेन ले जाया जाता था उनको उनकी कोई अलग से पेमेंट नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम होती थी, कि बोलते थे तुमको अभी विदेश घुमा दिया, अभी और पैसे काहे के मांग रहे हो। चलिए जहां मैं यहां वहां से अब रंगून चलते हैं गाने में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: एक पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित दूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।